सत्या सती नाई है पी होती जाए ना जाती इतना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन पाई कर कर देख किता अपना ज्योतिष की वड्याई ज्योतिष भावै।

दास हरिया रहो जन्म पिता लोक सुत बनता कोई ना किसकी करया सिर सिर संभाहे ठाकुर काहे मन को करया उदे ऊड आवै सह कोसा किस पाछे बचरे सरया तिन कवन खिलावै कवन चगावै मन मैं सिमरन करया सब निदान दस अस्त सिनान ठाकुर कर तल धरया जन नानक बल बल।

से जान जुग में सुख वासी से मुक्त पै जिन्हा प्याया जी तन टूटी जमती फांसी जिन निर पाओ जिन्हर निर पाओ प्याया जी तिनका पौ सबदवासी जिन सेव्या मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन्हा प्याया जी जन नानक तिन बल जाती तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुझ जी हर अनक अनेक अनंता तेरी अनक करहें हर पूजा जी तप तापे जपे बेअंता तेरे अनेक पढ़ें बहुत सिमरत सास जी कर किरिया खट करम तुरंता से भगत भले जन नानक जी जो भावें मेरे

कृपा थई दसमी गायो भात गिनती चौपाई हमरी करो हाथ दह रसा पूर्ण होए चित्ती इच्छा सब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रित पारा हमरे दुष्ट सब तुम कावो आप हाथ दे मोहे बचावो सुखी बसे मोरो परवारा फिर सिख सवे करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिए सब ऐरन को आज संघरिए पूर्ण होए हमारी आस्था हो तो यंती रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई और ना त्याऊं जो वह चाहो तो तुमसे पाऊं फिर सिख हमारे तारिए चुन चुन सुतर हमारे मारिए आप हाथ दे मुझे अभरिए मरण काल का तासन भरिए पूजो सदा हमारे पश्चात श्री आश्चर्य करो रक्षा राख लियो मुझे रखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंसा तुम हो पूरी चतुर दसंता काल पाए ब्रह्मा बप करा काल पाए शिव जी अब करा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया समस्ता जमन काल जो जी कई पियो वेद राज ब्रह्मा जो थियो जमन काल सब लोक सवारा नमस्कार है कहे हमारा जमन काल सब लक्ष बनायो देव दैत जशन उपजायो आद अंत एक

zu Sadan, Danasadan, Namdan, Tien Sadi, Nan, Jankia, Tende, Bunge, Digo, Digo, Tan, Tadeta, Sikhana, Namina, Matuki, Matadara Kab, Wahiduru, Ekar Kurpan, Tede, Sada, Sahitada, Dio, Abdehu, Rara, Sadi, Das, Niki, Yodi, आपने बच्चा ने रह रास्ता भी देखी पानी पड़ी सबके पास रह रास्ता भी पानी करते हैं अरदास करते हैं अनेक प्रकार की अपना चुका करते हैं अगे तो सबसे पास बाणी बनता बन रखना बाणी का प्रभाव आपके बच्चों के हितों पर होना अक्षर वाधा घाटा संचित माफ करने सलत में कार्य विरास करने आई हुई संगत दियाँ हाजरियाँ प्रवास करनियाँ ਸਬਦ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਰਨੇ ਸਹੀ ਕਰਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ

हर कीर्त तत् विचारे गुण गावत अतुल सुख पाया ठाकुर अगम अवतारे जो जन पार ब्रह्म अपने चुने तिनका बहर

चानन सामने चानन होए जो साक्षी ज्योत प्रगट होए ज्योत सभावे को वापसी होए हर चरण कमल मित्र अंग लेवत मन अंगन मोह आई पियासा कृपा जल दे नमस्कारन को होए सासे तेरे मन वासा राज हरी पूरी महला कथा काम क्रोध नगर व भया मिलता दू संगल संदा है पूर्व निश्चल को गुरताया मन हर निर्मंजन मिलता है सर साधु अंजलि पुन भड्डा है सर जन डॉग पुन भड्डा है रहा साखत हर साधना जानिया तन अंतर हमने कंदा है ज्यों ज्यों चले सुबह दुख पावे दम काल सहे से जिंदा है हर जन हर हर नाम समाने सुख जन मरण पर कंदा है अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर वो खूब खंड मंदा है हम भी मुसीन प्राव तेरे हर रात राखपत बड़ा है जन नानक नाम अदा चेक है हर नाम में ही सुख मंदा है राग गौरी तेरी।

तीसरा वचन साथ संगत जी ये दूजा वचन बड़ी डिटेल से करा तो लंबा चल जाएगा। यदि गुरु ग्रंथ साहब तो पूरी नहीं पई किधरों भी पूरी नहीं पै तीसरा वचन ध्यान दें बाबा नंद सिंह जी महापुरुष कहते सी अग न कोई हस के हाथ ला दे भावे रो के ला दे अग का काम है उन्हू साड़ दे भावे अग न कोई हस के हाथ लावे मित्र बना के लावे रो के लावे अग ने साड़न।

यतन किया जावे, मन जोड़ के पढ़ी जावे, ते जे किधरे मन नहीं भी जुड़िया ते ए तेरी एक तिल जनी घालना बिरथा नहीं जान देंदी। अग नू कोई हस के हथ लावे, रो के लावे, अग का कम साड़ देना। बाणी मन जोड़ के पढ़िए चंगी गल है, ते जे पढ़दिया मन नहीं भी जुड़िया मत समझी कुछ बनया नहीं। भावें मन जोड़ के पढ़िए भावें मन नहीं जुड़िया, बाणी ने तेरे पापा नू साड़ ही देना है। आखो सतनाम। खालसा जी, अज बड़ी लोड़ जे इहदी प्रचार। कई बीबियां दास नू गुरमुख प्यारे मिलते हैं, हफ्ते के पांच सात मिलते ही, तो पुछीदा तुहाडा नेम किन्ना है, कहिंदे सी जी करीदा हुण छड़दा, क्यों नहीं करदे भी छड़ को दिता, कहिंदे जी मन नहीं जुड़दा नेम छड़दा। हक सतनाम। फायदा की ओ प्यारे हो, यतन करना मन जोड़न का, जे नहीं भी जुड़ता तो तुहाडा उस समा दिता कि जाया नहीं गया। मैं नहीं कहता, गुरबाणी के बचन ने करी।

तेरी अंगूठा ते उंगल भी कस दी परवान जावा। सात संगत ध्यान देना, वो फकीर ने पहले तो उस मुसलमान को शाबाश दी, 11 साल तस्वीर फेरी, उंगल कसवी, मुठा कसवी, इना अल्लाह का नाम कसवी फेरी। नाल ही फकीर कहता है दरगाह झाती पावा, एहो जी इना अल्लाह के ना जपण वाले की दरगाह की पोजिशन है। कहते फकीर की पहुंच थी दरगाह वेखण वाली, बाणी च लिखे जा का कया दरगे चले, कई की पहुंच होंगी। जदों कहते दरगाह झाती मारी फकीर ने सात संगत ध्यान देना, झाती मार के फकीर कहण लगा, ओ पुरखा बड़ा दुख होया, तू 11 साल अल्लाह के नाम की तस्वीर फेरी, तेरी उंगल कस गई, अंगूठा कस गया, पर एक बड़ा अफसोस से दुख होया, तेरी एक भी तस्वीर दरगाह च मैं वेखी है प्रवान नहीं हुई। आपको सतनाम, तेरी एक भी तस्वीर दरगाह च प्रवान नहीं हुई। संगत ध्यान देना, जेड़े शरीर नू फकीर ने गल कही ओदे चेहरे ते कोई गमी नहीं, ओदे चेहरे ते कोई घबराहट नहीं, कोई उदासी नहीं, उसे तरह खुश। फकीर कहता 11 साल तेन तस्वीर फेरदे हो गए, तेरी एक भी तस्वीर दरगाह परवाह नहीं, तेन दस

0: केवो दी रंगीली तहसी दे वसनीक स्रोतियो, तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ये प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सभा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हाँ कि इस प्रोग्राम नूं होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे। साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नूं पता ही है, जे नहीं तां ओह वी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3374 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3375।
1: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
2: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions, please call 250-392-3874.

सावधान होकर बैठो। साधक सिद्धि जिसे कोल करदे ब्रह्मे अंदर ध्यान नहीं हिरदे। साधक जिहड़े साधना वाले है कौन? जिज्ञासु सिद्ध सिद्धियां वाले वो परमात्मा नूं लाई दे सकदे हैं। ये ब्रह्मा या इंद्र ये देवते कहंदे उस परमात्मा नूं हिरदे विच ध्यांदे आ। ब्रह्मे इंद्र ध्यान हिरदे अपने हिरदे च ध्यांदे आ। कोट तेतीसा कुजहै तापो गुरमिल हृदय गावन। कोट तेतीसा 33 करोड़ देवते जड़े ये भी उन्होंने खोज दे सकते उस परमेश्वर गुरमिल हृदय गावन। उस परमात्मा के जस न गुरु के प्यारे जड़े सेवक आ वो सतगुरों ने मिल के मन में गुरु का ध्यान करके उन्हों गाते हैं। आठ पहर को जापे पवना धरती सेवक पाए के चरना, क्योंकि यह परमात्मा अठे पैर पवन देवता है, यह भी आप दे नाम जपदा। वरुण देवता भी आपका सेवक है, धरती भी आपके चरणों की पाएक मैंने दसी है। और इस वास्ते धरती आप जी के चरणों की पाएक मैंने दसी होकर सेवा करती है। खाणी बाणी सर्वनवासी सबना के मन भावने चारे खाणियों के जीवन के जिरे स्थित हुई उत्पज चारे बाणियां पर संति मधमा से वैखरी सारे च आप निवास कर रहे हैं। सारिया के मन आप जी भाते हो। साचा साहेब गुरमुख जापै पूरे गुर कै सब सिंह जापै। जेड़े गुरमुख प्यारे है वह सच्चे साहब के नाम में जपते हैं। सच्चा साहिब जिहड़ा सतगुरों ने जापे में नहीं जाणिया जांदा, पूरे सतगुरों के शब्द करके आपै उन्नी सियाण हुंदी है, पछाणिया जांदा। जिन पिया सही तृप्ता से सच्चे सच अगा बणिया, जिन्हें सतगुर सच्चे पातशाह तो नाम रूपी अमृत नूं पीता, वो संसार के पदार्थां वलों तृप्ता से तृप्त हो गया। कोई इच्छा नहीं रहेगी फिर सच मैंने निश्चय करके सच्चे नाम जप के फिर जो स्वर्ग आदि के पदार्थ है उन्होंने वालों अगावन उदनों भी रच गया, उन्होंने भी इच्छा नहीं है। इस कर सहजा सोई सहेला अंत मनोज करे सदकेला, कहते उन्होंने अंत संरूपी घर में सहजा मैंने ज्ञान है। इस वास्ते सहेला सूची तेरे जेड़े आनंद देने वाले बनोद कौतकों के करने वाला कौन है? परमेश्वर। पूरे विच सदा केला मैंने खुशियां करते हैं। सो तनवंता सो बढ़ता जो करण चरणी मन लावण, जो गुर चरणी मन लावण वो धन वाला आ, वो ही बड़ा शाहूकार आ। साह मैंने शाहूकार आ जिन सतगुरों के पवित्र चरणों ने अपने मन में ला लिया है। पहलों दे तैरिक समाहा पिछों दे तैं जंतो पाहा। इन अहंकार परमेश्वर पहला तुसीं जीवां नूं पैदा कीता, इन्हां दे पैदा करन तों पहलां रिक समाहा इन्हां नूं भोजन पहुंचा दिता। क्योंकि माता दे जिहड़े दुध आ उन्हां च दुध पैदा करता, पिछों फिर जीवां नूं पैदा कीता। कोई जीवड़दाता वरना स्वामी लवन कोई लावण, ये मालक तेरे वर्गा होर कोई दाता देने वाला दाता नहीं। तेरे लवे सदर्श बराबर किसी नूं नहीं लाया जाता, तेरी कोई बराबरी नहीं कर सकता। जिस तू टुठा सो तुद से आए साध जना का मंत्र कमाए, जिन्हां ते आप जी टुठे प्रसन्न हुंदे हो वो आप जी नूं चाहुंदे, वो जिहड़े संत जाना का मंत्र कमाउंदे, जो संतां दा उपदेश उहदी कमाई करदे। आप तरह सगले कुल सारे जिस तिस दरग है ठाक न पावने, वो आप तो तर जाते हैं। सारिया अपनिया कुलों में विसार लेंगे भगतियां ना किसी कुल आधारे, और दरगाह के ठाक कोई रोक टोक नहीं पैंती। तू बड़ा तू उचो उचा तू बेअंत अस मूचो मूचा, आप सारे तो वड्डे है। जेड़े उच्चे ब्रह्मा आदि उन्होंने तो भी तुम उच्चे हैं। आप जी बेअंत हैं, आत्मा ने

गुरु महाराज जदों आ मैदान विच आ गए तां उन्हां दे टकरे ते हुण कौन आवे। सारे जरनैल दिल चुराउण लगे। गुरु जी दे तीरां सामने वैरी दी फौज पौण अगे मच्छरां वांग उड्डण लगी। घड़ियां पलां विच हजारां वैरी मारे गए। फौज मारदी वेख के काले खां घबरा गया। उन्हें पेंदे खां नूं सद के आखिया, पेंदे खां तूं ते कहिंदा सी गुरु नाल सूरमाई कोई नहीं, मैं कल्ला ही उस नूं जित लवांगा, ते हुण 75,000 फौज विचों अद्धी वी कैम नहीं दिसदी। किथे गई उह बहादरी जिहदियां तारां वजदियां सन? जरा आप अगे होके गुरु नाल दो हथ ते करके विखा, असीं वी तेरी बहादरी देख लईए। इस बोली ने पेंदे खां दे अंदर अग ला दित्ती। उन्हें अखां लाल करके कहा, मैं तां बाकी योद्धियां दी बहादरी वेख रहा सां, पर लगदा है गुरु नूं जित्तण दा सेहरा किस्मत मेरे सिर ही बनना चाहुंदी है। लो, मैं हुणे गुरु नूं मार के लड़ाई मुका दिंदा हां। फुलकारी पेंदे खां हथियार संभाल के गुरु जी वल वधिया। महाराज ने अपने योद्धियां नूं कहा कि पेंदे खां नूं अगे आउण दित्ता जावे, तो आप ही उस नाल निजिठणगे। पिंड विच पहुंच के

सच्चे पातशाह कृपा रखनी इसे तरह साडी निभ जावे, जिन्हां ने लाइया वह निभा गए, साहब जादे निभा गए, असी भी तुहाडे पुत्र हाँ कहने ते हाँ गुरु गोबिंद सिंह साडे पिता ने। पर बड़ा औखा गुरु गोबिंद सिंह दियां लालां वर्गे बनना, अपने पुत्र वार दिते गोद सुनी कर ली, फिर सानू गोद लिया, फिर सानू मर्द ने अपने बनाया। ते आओ प्यारे हो अमर छकीए सिंह सजिए, अरदास करिए

के गात्रा उपर दी दाड़ा प्रकाश करके सोने लगते हो ना, इन्हें उदन भी नहीं सी फब्बे जितन लाड़े बने, उदन भी इन्नी फब नहीं भावे घर वाली पूछ लियो, अज ज्यादा सोने लगते हो। भैणा भी आ केसरी दस्ताना आ केसरी चुनिया अज सोहनिया लगदियां। प्यारे हो गुरु का तो बाणा ही वखरा, आओ देखी मैं दुनिया तो, देखी मैं दुनिया तो गुरु घर की छान उचेरी,

गुरमति मन निर्मला रसना हर रस पीजै राम रसना हर रस पीजै अंतर पीजै साच शब्द बीचारी अंतर खूटा अमृत भरिया शब्दे काढ़ पीए पनिहारी जिस नदर करे सोई सच लागे रसना राम रुदीजै नानक नाम रते से निर्मल होर हूं मैं मैल परीजै पंडित ज्योत की सब पढ़ पढ़ कूक दे किस पह करह पुकारा राम माया मोह अंतर मल लागे माया के वापारा राम माया के वापारा जगत प्यारा आवन जान दुख पाई

हर हर हर हर नाम मेरा मन वसाई राम। हर हर नाम मेरा मन वसाई सब दुख वसारण हारा। वडभागी गुरदर्शन पाया धन धन सतगुरु हमारा। उठत बैठत सतगुरु।

जप हर हर नाम कमल पर गाते, हर नाम नमंग निद पाई। हूं मैं रोग गया दुख लाथा, हर सहज समाद लगाई। हर नाम वडाई सतगुर ते पाई, सुख सतगुर देव मन परसे। हों जीवा सतगुर देख सरसे।

हर दयाल सरनाया तू दुख भंजन सर्व सुख दाता हम पाथर तरे तराया सतगुर भेट राम रस पाया जन नानक नाम उधारी हर धारहु कृपा कर कृपा लेहु उबारे राम वडहंस महला चौथा घोड़िया एक ओंकार सतगुर प्रसाद देहे तेजन जी राम पाइया राम धन मानस जन्म पुन पाइया राम मानस जन्म वड पुन्ने पाया देहे सो कंचन चंगड़िया गुरमुख रंग चलूला पावे हर हर हर नवरंगड़िया एहे देहे सो बांकी जित हर जापी हर हर नाम सुहाविया वडभागी पाई नाम सखाई जन नानक राम उपाइया देह पावो जीन बुझ चंगा राम चढ़ लंगा जी बिखम भोए अंगा राम बिखम भोए अंगा अंत तरंगा गुरमुख पार लंघाए हर बोहत चढ़ वडभागी लंघै गुर खेवट शब्द तराए अन दिन हर रंग हर गुण गावे हर रंगी हर रंगा जन नानक निर्वाण पद पाया हर उत्तम हर पद चंगा कड़ियाल मुखे गुर ज्ञान दृढ़ाया राम तन प्रेम हर चाबक लाया राम तन प्रेम हर हर लाए चाबक मन जिणै गुरमुख जीतिया अकड़ो कढ़ावे शब्द पावे अपियो हर रस पीतिया सुन श्रवण बाणी गुर बखाणी हर रंग तुरी चढ़ाया महामार्ग पंथ बिखड़ा जन नानक पार लंघाया घोड़ी तेजन देहे राम अपाइया राम जित हर प्रभ जापै सा धन तन तुखाइया राम जित हर प्रभ जापै सा धन सब आसै तुर पाया किरत जुड़ंदा चढ़ दे हड़ घोड़ी बिखम लंघाए मिल गुरमुख परमानंदा हर हर काज रचाया पूरै मिल संत जना जानी आई जन नानक हर वर पाया मंगल मिल संत जना वाधाई वडहंस महला चौथा देहे तेज नड़ी हर नवरंगिया राम गुर ज्ञान गुरु हर मंगिया राम ज्ञान मंगी हर कथा चंगी हर नाम गतमित जानिया सब जन्म सफलो किया करतै हर राम नाम बखाणिया हर राम नाम सलाहे हर प्रभ हर भगत हर जन मंगिया जन कह नानक सुनो संतो हर भगत गोविंद।

हर मिले हर गुण सुख घनी, गुर शब्द पाया हर नाम त्याया, बडभागी हर रंग हर बाणी, हर मिले स्वामी अंतर जामी, हर नव तन हर नव रंगिया, नानक बखाने नाम जाने, हर नाम हर प्रभ मंगिया, कड़ियाल मुखे गुर अंकस पाया राम, मन मैगल गुर शब्द वस आया राम, मन वसगत आया परम पद पाया, सा धन कंत प्यारी, अंतर प्रेम लगा हर सेती, कर सो है हर प्रभ नारी, हर रंग राती सहजे माती, हर प्रभ हर हर पाया, नानक जन हर दास कहत है, वडभागी हर हर त्याया, देह घोड़ी जी जित हर पाया राम, मिल सतगुर जी मंगल गाया राम, हर गाए मंगल राम नामा, हर सेव सेवक सेवकी, प्रभ जाए पावे रंग महली, हर रंग माने रंग की, गुण राम गाए मन सुपहाए, हर गुरमति मन त्याया, जन नानक हर कृपा तारी, देह घोड़ी चढ़ हर पाया, राग बड़ हंस मां

अमृत पिया रहया आवण जानी सो कर लता सहज समदा हर का नाम अधारा कहो नानक सुख माने रलिया गुरपुरे कहो नमस्कारा सुन सज्जन जी मैंडड़े मीता राम गुरमंत्र शब्द सच दीता राम सच शब्द ते आया मंगल गाया चूके मनो अदेसा सो प्रभ पाया कतह ना जाया सदा सदा संग बैसा प्रभ जी भाणा सच्चा माणा प्रभ हर तन सहजे दीता कहो नानक तिस जन बलिहारी तेरा दान सबनी है लीता तौ भाणा ता त्रिपत अगाए राम मन थिया ठंडा सब त्रिशन बुझाए राम मन थिया ठंडा चूकी डंजा पाया बहुत खजाना सिख सेवक सब पुंचन लगे हौ सतगुर कै कुर्बाना निरभउ भये खसम रंग राते जमकी त्रास बुझाए नानक दास सदा संग सेवक तेरी भगत करो।

0: कित मुख तुद सलाही
1: गुण अवगण मेरा किसना बिचारिया
0: बख्श लिया खिन माही नौ निद पाई बजी वधाई वाजे अनहद तूरे कहो नानक मैं वर घर पाया मेरे लाथे जी सगल वसूरे सलोक क्या सुनेंदो कूड़ वंजन पवन चलारिया नानक सुनियर ते परवान जो सुनेंदे सच धनी चंत तिन घोल कमाई जिन प्रभ श्रवणी सुनिया राम ते सहज सुहेले जिन हर हर रसना भणिया राम ते सहज सुहेले गुण अमोले जगत उधारने आए तै बोहित सागर प्रभ चरना केते पार लंघाए जिन कौ कृपा करी मेरा ठाकुर तिनका लेखा ना गणिया कहो नानक तिन कोल कमाई जिन प्रभ श्रवणी सुनिया सलोक लोइन लोई डिठ प्यास ना बुझै मूह घणी नानक से अखणियां बयान।

ठाकुर माने से परधाने हर सेती रंग राते हर रस अघाए सहज समाए घट घट रमैया जाते ते सज्जन संत से सुखिए ठाकुर अपने पाणी कहो

साईं संत ना बाहरा शंत मेल जल जलह खटाना राम संग ज्योति ज्योत मलाना राम समाए पूर्ण पुरख करते आप आपह जानिए तह सुन सहज समाध लागी एक एक वखाणिए आप गुप्ता आप मुक्ता आप वखाना नानक भ्रम पै गुण बिनासे मिल जल जलह खटाना वडहंस महला पंजवा प्रभ करण कारण समर्था राम रख जगत सगल दे हथा राम समर्थ सरना जोग स्वामी कृपा निध सुखदाता हों कुरबाणी दास तेरे जिन्नी एक पछाता वर्ण चिहन ना जाए लखिया कथन ते अकथा।

ब्रह्म दुख दर्द निवार किन मह रख ले हो दीन दयाला मात पिता स्वाम सज्जन सब जगत बाल गोपाला जो सरने आवे गुण निदान पावे तो बहुड़ जन्म ना मरता बिनवंत नानक दास तेरा सब जी तेरे तू करता आठ पहर हर त्याई राम मन इच्छे अड़ा फल पाइए राम मन इच्छ पाइए प्रभ त्याई मिटह जम के त्रासा गोविंद गाया साध संगाया पई पूर्ण आसा तज मान मोह विकार सगले प्रभु कै मन पाइए बिनवंत नानक दिन सरैणी सदा हर हर त्याईए दरवाज है अनहत वाजे राम घट घट हर गोविंद गाजे राम गोविंद गाजे सदा बिराजे अगम अगोचर ऊंचा गुण बेअंत किस कहन ना जाई कोई ना सकै पहुंचा आप अपाए आप प्रित पाले जी जंत सब साजे बिनवंत नानक सुख नाम भगती दर वज है अनहद वाजे राग बड़ा हंस महला पहला कर पंजवा अलाहनिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद धन सरंदा सच्चा पातशाह जिन जग धंदे लाया मोहलत पुन्नी पाई भरी जानी अड़ा घत चलाया जानी घत चलाया लिखया आया।

पूर्व कमाया धन सरमदा सच्चा पातशाह जिन जग तंदै लाया साहिब सिमरहो मेरे भाई हो सबना एहो पयाण इतै तंदा कूड़ा चार देहा आगै सर पर जाना आगै सर पर जाना ज्यों मेहमाना काहे गर्भ की जय जित सेवे दरगाह सुख पाई है नाम तिसे कालीज है।

0: ऐसे आया सब को जाति, कूड़ करहो अहंकारो, नानक रुन्ना बाबा जानिए, जे रोए लाए प्यारो, वड़ांस महला पहला, आव हो मिल हो सहेली हो, सचड़ा नाम लए हां, रोए है बिरहा तन का, अपना साहेब संभाले हां, साहेब संभाले हैं पंथ निहाले हैं, असा पे उठे जाना, जिसका किया तिनी ही लिया, हुआ तिसे का पाना, जो तिन कर पाया सो आगे आया, असी के हुक्म करे हा, आव हो मिल हो सहेली हो, सचड़ा नाम लए हा, मरना मंदा लोका आकी है, जे मर जाना ऐसा कोई, सेव हो साहिब समृत अपना, पंथ सहेला आगे होए, पंथ सहे ले जाव हो ता फल पाव हो, आगे मिले वडाई, ते कैसे जाव हो सच समाव हो, ता पत लेख पाई, महली जाए पाव हो खसमै पाव हो, रंग सो रलियां माने, मरना मंदा लोका आखी है, जे कोई मर जाने, मरन मुनसा सूर्या हक है, जो होए मरन परवान, सूरे से आगे आखी है, दरगाह पावे है साची मान, दरगाह मान पावे है पत स्यो जावे है, आगे दुख ना लागे, कर एक त्यावे है ता फल पावे है, जित सेवे है पहो पागे, ऊंचा नहीं कहना मन में रहना, आपे जाने जानो, मरन मुनसा सूर्या हक है, जो होए मरह परवान, नानक किसनो बाबा रोई है, बाजी है यो संसारो, पीता वेख साहिब अपना, कुदरत करे बीचारो, कुदरत बीचारे धारन धारे, जिन किया सो जाने, आपे वेख आपे बूझे, आपे हुक्म पछाण, जिन किस किया सोई जाने, ता का रूप अपारू, नानक किसनो बाबा रोई है, बाजी है हो संसारू।
1: केलबू दी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो, तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ए प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सवा विलियम स्लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हां कि इस प्रोग्राम नूं होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसी सानूं सुझाव दिंदे रहोगे।
2: साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नूं पता ही है, जे नहीं तां ओह भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3374 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3375।
3: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
4: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha at Williams Lake. Any comments and suggestions please call
5: 250-392-3874. क्यों नहीं हो रहा है काम सुभाई गुरु का नाम ले मार्ग तो कसम तो पति कौन ली तो चीजा कितने

वैद गुरु गोविंद पर कर नाम अब खुद मुख देवे काटे जम की सगल रोग का औषध नाम। गुरसिख प्यारे जदों सिखा ने बेनती की सतगुर सानू बचाओ इस जहाज विचो जिज्ञासुआ दे दिल गिरदे साफ होंदे ने श्रद्धा भावना होंदी है वो निस्तारा नहीं करमी श्रद्धा के पखंड है के सच उस समय पुछया देन वाले संग्राम दसण वाले जाल विच फसाउंदे सी जदों सिखा ने की बेनती धन गुरु अर्जन देव जी ने गुरमुख प्यारे श्री अमृतसर साहब तो मर्यादा तो ही फिर संसार वास्ते भाई किसे तो पुछया नहीं पुछनी मेरे दिन भले किवें होंगे ए महीना चंगा किवें लंघूंगा ए महीने विच मेरी चढ़दी कला जिवें हुण आपां अरदास करदे मंग मंगी है। महाराज ने फिर सिद्धांत की दसिया कि अरदासा करके ते गुरमुख प्यारिया बेनतियां करके दिल चंगे नहीं होने। सुनो दिल चंगे दाले पढ़िया होना तुसी सवेरे।

सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच सोचै सोचना हो गई इंदे सोची लख बार सताए चुपना हो गई इंदे लाए रहा निवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना प्रियां पार साहस स्याणता लख हो हिंसा इक न चलै नाल केव सचियारा होई है केव कूड़ै तुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म लबड़ियाई हुक्मी अतम नीच हुक्म लेख दुख सुख पाई है एक न हुक्मी बख्शीस एक हुक्म सदा पवाई है हुक्म अंदर सब को बाहर हुक्म न कोई नानक हुक्म जे बुझै तो मैं कह न कोई।

विद्या विषम विचार गावे कौ साज करे तन के गावे कौ जी लै फिर गावे कौ जप दिस दूर गावे को भी कह दूर कथना कथी नावै तोट कथ कथ कथी पोटी कोट कोट दिंदा दे लेंदे सतपाही जुगां जुगंतर साही साही हुक्मी हुक्म चलाई राह नानक विगसै वे प्रवाह साचा साहिब साच नाई पाख्या पाउ अपार आख हे मंग है देह दे दात करे दातार फिर के अगर रखी है जित दिशा दरबार मोहों के बोलन बोली है जित सुन तरे प्यार अमृत वेला सच नाऊ बड़ियाई विचार करमी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार नानक ए वै जानिया सब आपे सचियार थाप्या न जाए कीता न होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान नानक गावी है गुण निधान गावी है सुनिए मन रखिया पाओ दुख पर हर सुख पर लै जाए गुरमुख नादन गुरमुख वेदन गुरमुख रहया समाई गौरीश्वर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई जे हाँ जाना आखा नाही कहना कथन ना जाई गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई तीरथ नावा जे तुस पावा गण भाणे के नाही करी जेती सिरठ उपाई वेखा गुण करमा के मिलै लई मत विच रतन जवाहर माणिक जी एक गुर की सिख

कही ना जाए, जे को कहे पिछा पछताए, कागद कलम न लिखन हार, मने काबे करन विचार, ऐसा नामो निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मने सुरतो वह मन बुद्ध, मने सगल भवन की शुद्ध, मन्ना मोह चुटा न खाई, मन्ना जम के साथ न जाई, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ना मार्ग ठाक न पाए, मन्ना पातशाह प्रगट जाए, मन्ना मग न चले पंथ, मन्ना धर्म से कीर्तन बंद, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए।

कर कर करना निकला जा। आपे बीज आपे ही काह, नानक हुक्मी आवह जा। तीरथ ताप दया दस दान, जेको पावे दिल का मान। सुनया मनया मन कीता पाऊ, अंतर गातु तीर्थ मल नहाऊ। सगुण तेरे मैं नाही कोई, गुण गुण कीते भगत न होए।

कवण सुबेड़ा भक्त कवण कवण थित कवण वारु कवण से रुचि महाकवण जितवा कारु वेला पाया पंडती रिहुगा लेख पुराण भक्त न पायो काटियां जे लिखण लई पुराण खेतवार न जोगी जाने रुत महा न कोई जा करता आश्र ठीको साजे आपे जाने सोई केव कर आखा केव साल आही केव सोवर नहीं केव जाना नानक आखण सब को आखे एक दू एक प्याणा वड्डा साहेब वड्डी नाई कीता जा का होवे नानक जे को आपा जाने अगे गया ना सो।

जेवड़े आप जाने आप आपू नानक नदरी करम दातू बहुता करम लिखा न जाई वड्डा दाता चलना तमाई केते मंग है जोड़ा पार केतिया गणत नहीं विचार केते कब्द कह बेकार केते लै लै मुकर पाए केते मूर्ख गाही काहे केतिया दुख भुख सद मार वेह पेदात तेरी दातार बंद खलासी भाणे होए होर आख ना सकै कोए जे को खाए को आखण पाए।

अमल गौण अमल व्यापार अमल व्यापारी अमल भंडार अमल आवे मुल जाहि अमल भाई अमुला समाहि अमल धर्म अमल दीवान अमल टोल अमल परवान अमल बख्शीस अमल निशान अमल कर्म अमल

तीर जसने आरु अहरण मत भी दियारु पाओ कला अगंत पताऊ पांडा पाओ अमृत तटाल कड़िया शब्द सची डकसाल जिनका नदर कर।

माता धरत महत दिवस रात दुदाई लाया सिल सगल जगत चंगे आईया बुरे आईया वाचा धर्म हजूर।

त्रिपुर सर्ग है अनिल अनाद है अजय आजाद है जन्म है वर्ण है भूत है पर्ण है अगंज है अपांज है चूज है चांझ है मीकर फीक है तंद है बंद है निर्भूज है असूज है अकाल है अजाल है अल्लाह है जह अनंत है महंत है अलीक है निरसरीक है निर्लंब है सम है अगम है जम है भूत है सूत है अलोक है अशोक है अकर्म है परम है अजीत है पीत है बाह गाय अमान है निदान है नीक है फिर एक है कुजंग प्रयात शंभ नमो सर्वमान्य समास्ति निदाने नमो देव देवे अपेखी अपेवे नमो काल काले नमो सर्व काले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पावणे अनंगी अनाथे नरसंगी परमाथे नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत नृत्य नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बात बादे अनंगी अनामे समाप्ति स्वरूपे परपंगी परमाथे समाप्ति बपूते कलंकं बिना ने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश ब्रह्म परम रूपे नमो जोग जोगेश ब्रह्म परम सुदे नमो राज राजेश ब्रह्म परम वृदे नमो शस्त्र पाणे नमो वस्त्र माणे नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेक्षी अपरमे अभोगी अभुगते नमो योग योगेश ब्रह्म परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेता प्रेत देवेशु धर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो शाहंग नमो भूप भूपे नमो दान दाने नमो मन माने नमो रोग रोगे नमस्तंग शनाने नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्टे इष्टे नमो तंत्र तंत्रंग।

काम आत दुद प्रचंड मिद गद अखंड अलिशा कर्म दृशा धर्म सर्वा प्रणाड्या आण दंड बाड्या जाजरी छंद दव प्रसाद गोबिंदे मुकंदे उदारे पारी हरियम करियम निरनामे कामे पुजंग प्रयात छंद चतर जकर करता चतर जकर हरता चतर जकर दाने चतर जकर जाने चतर जकर वरती चतर जकर भरती चतर जकर पाले चतर जकर काले चतर जकर पासे चतर जकर वासे चतर जकर माने चतर जकर दाने जाजरी छंद ना सत्रह न मित्र न परमंग न पितरह न करमंग न काही जन्मंग अजाय ना चित्र न मित्र परे पवित्र प्रभिषा दिशा दृशा कृषय भगवती छंद तव प्रसाद कथ ते के आसज देसा क्या पिज पेशा गया गंज करम क्या पंज परम क्या पिज लोक क्या दत सोक क्या भूत वर्ण कि भूत करना के राज प्रभा कि धर्मं तजाय हे अशोक वर्ण के सर्वा वर्ण के जगतं कृति है के शतरंग क्षत्री है के ब्राह्मण स्वरूप है के अनुपवन रूप है के आदो देव है के आप देव है के चतरंग बहिना के अधीना के रोजिर जायकर ही मेरे हाक है के पाक बेअब है के गैबुल गैब है के आप बुल गुनाह है के शाह निशा है के कारण कुनिंब हैं के रोजी रहन हैं के राज करीम हैं के कर्मन करीम हैं के सर्वं कली हैं के सर्वं दली हैं के सर्वत्र माने हैं के सर्वत्र दाने हैं के सर्वत्र गौन हैं के सर्वत्र पावन हैं के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेशा है के सर्वत्र राज्य है के सर्वत्र साज्य

सर्वत्र देश है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र दुख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र माने आए सुदैव प्रधान आए के सर्वत्र जाते आए के सर्वत्र थापे आए के सर्वत्र भान आए के सर्वत्र मान आए के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वम कलीम है के परम सहीम है के आकल उलम है के सर्व कलाम है के हुसन वजू है तमाम रजू है हमेशल सलाम है सलीखत मदाम है गलीमल सकस्त है गलीमल प्रस्त है बलिंदल मकान है गलीमल जमान है तमीजल तमाम है रुजुअल नदान है हरीफुल अजीम है रिजा की यकीन है अनेकुल तरंग है भेद है पंग है अजीजुल नवाज है गनीमुल खराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त बभूत है प्रभुक्त प्रवाह है सजुक्त सदा है सदैव स्वरूप है भेदी अनूप है समास्तो पराज है सदा सर्वसाज है समास्तुल सुलाम है सदैव काम है निर्बाध स्वरूप है गाध है अनूप है ओ अंगाद रूपे अनाद स्वरूप है अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रकामे त्रिभर्गम त्रिबाधे अगंजे अगाधे शुभम सर्वपाग्य सुसर्वा नरागे त्रिभोगत स्वरूप है सहज है छूत है गणर्कन प्रणास है प्रत्युल प्रवास है निरुक्त प्रवाह है सदैव सदा है विभोक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है निरुक्त सदा है विभुक्त प्रवाह है अनुक्त स्वरूप है प्रजोत अनूप है चाचरी शंभ अपंग है अनंग है पेखा लेख है परम है कर्म है अनाद है जुगाद है अजय है भय भूत है सूत है अनाश अवदास है तंत है बंध है।

प्रीमल कमाल है कि जरूरत जमाल है, जय चलन प्रकाश है कि मैं तो सुभाष है, जय अद्भुत रूप है कि मैं तो भूत है, कि मैं तो बसा है कि आत्म प्रभा है, कि अचलंग रंग है कि मैं तो अपंग है, मद पार छंद तव प्रसाद, मुन मन प्रणाम गुणगन मुदाम, हर बर गंज हर नर पर पांज, अनगन प्रणाम मुन मन सलाम, हर नरिया खंड भर नरिया मंड, अन पवन आसु मुन मन प्रकाश, गुणगन प्रणाम जल थल मुदाम, अंश जे अंग आसन पांग, उपमा पार गात उदार, जल थल मंड देश विश पांड, जल थल महंत देश विश बेअंत, अन पवन आसु तृत तर तुरा।

गुरुदेव ए नमः अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख पावो कल कलेश तन माहे मिटावो सिमरो जात दिसंबर एक नाम जपत अगनत अनेक।

मोहे उधारो सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना के मन विश्राम रहाओ। प्रभ के सिमरन गर्भ न बसे, प्रभ के सिमरन दुख जम न से, प्रभ के सिमरन काल पर हरे, प्रभ के सिमरन दुश्मन तरे, प्रभ सिमरत कछ विघ्न न लागे, प्रभ के सिमरन अनदिन जागे, प्रभ के सिमरन पहु न व्यापे, प्रभ के सिमरन दुख न संतापे, प्रभ का सिमरन साध के संग सर्व निधान नानक हर रंग, प्रभ के सिमरन विद सिद्ध नवनिध, प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध, प्रभ के सिमरन जप तप पूजा, प्रभ के सिमरन बिनसै दूजा, प्रभ के सिमरन तीरथ स्नानी, प्रभ के सिमरन दरगह मानी, प्रभ के सिमरन होय सुफला, प्रभ के सिमरन सुफल फला, से सिमरै जिन आप सिमराए, नानक ता कैला गोपाय, प्रभ का सिमरन सबसे ऊंचा, प्रभ के सिमरन उधरे मूचा, प्रभ के सिमरन तृष्णा बुझय, प्रभ के सिमरन सब किछु सुझय, प्रभ के सिमरन नाहि जम त्रासा, प्रभ के सिमरन पूर्ण आशा, प्रभ के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृदय माहि समाए, प्रभ जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना, प्रभ को सिमरै से तनवंते, प्रभ को सिमरै से पतवंते, प्रभ को सिमरै से जन परवान, प्रभ को सिमरै से पुरुष प्रधान, प्रभु को सिमरै से वे मुता जे, प्रभु को सिमरै से सर्व के राजे, प्रभु को सिमरै से सुखवासी, प्रभु को सिमरै सदा अविनाशी, सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगे रवाला, प्रभु को सिमरै से पर उपकारी, प्रभु को सिमरै तिन सद बलहारी, प्रभु को सिमरै से मुख सुहावे, प्रभु को सिमरै तिन सुख बिहावे, प्रभु को सिमरै तिन आत्म जीता, प्रभु को सिमरै तिन निर्मल रीता, प्रभु को सिमरै तिन अनंत कन्हेरे, प्रभु को सिमरै बसे हरनेरे, संत कृपा ते अन दिन जाग, नानक सिमरन पूरे भाग, प्रभु के सिमरन कार्य पूरे, प्रभु के सिमरन कभू न चूरे, प्रभु के सिमरन हर गुणवानी, प्रभु के सिमरन सहज समानी, प्रभु के सिमरन नहि चलासन, प्रभु के सिमरन कमल विगासन, प्रभु के सिमरन अनहद चुनकार, सुख प्रभु सिमरन का अंत न पार, सिमरै से जन जिन को प्रभु माया, नानक तिन जन सरनी पाया, हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग भेद उपाए, हर सिमरन पै सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चौंकुंट जाते, हर सिमरन तहरी सब तरना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन कियो सकल अकारा, हर सिमरन मैं आप निरंकारा, कर कृपा जिस आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया, सलोक दीन दर्द दुख पंजना, कट कट नाथ अनाथ, शरण तुम्हारे आयो, नानक के प्रभ साथ, अष्टपदी जय मात पिता सुत मीत न पाई, मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई, जय महा भयान दूत जम तलै, तह केवल नाम संग तेरे चलै, जय मुश्किल होवे अत पारी, हर को नाम खिन माहे उधारी, अनक पुनः चरण करत नहीं तरह, हर को नाम कोट पाप पर हरे, गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख कनेरे, सगल सिद्ध को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया, लाख करोरी बंधन परे, हर का नाम जपत निस्तर, अनक माया रंग तिख न बुझावे, हर का नाम जपत अघावे, जिह मार्ग इह जात इकेला, तह हर नाम संग होत सुहेला, ऐसा नाम मन सदा तिहाइये, नानक गुरमुख परमगत पाइये, छूटत नहीं कोट लख बाही, नाम जपत तह पार पराही, अनक विघन जय आय संघारे, हर का नाम तत्काल उधारे, अनक जोन जन में मर

कह हर का नाम जन को मुकत जुगत हर कै नाम जन को त्रिभुत भुगत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत कब परे न पांग हर का नाम जन की वड्याई हर कै नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन को भोग जोग हर

नाम की महिमा संत ऋतवस है, संत प्रताप दुर्त सबनस है, संत का संग बड़ भागी पाई है, संत की सेवा नाम तिहाई है, नाम तुल कछ अवर न होए, नानक गुरमुख नाम पावे जन को सलोक। बहु शास्त्र बहु सिमृति देखे सर्व टंडोल, पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल। अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खट शास्त्र सिमृत वख्यान, योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया, सगल त्याग बन मध्य क्रिया, अनेक प्रकार की बहु जतना, पुनदान हो मैं बहु रतना, शरीर कटाए हो मैं कर राती, वर्त नेम करे बहु पाती, नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। नौखंड पृथ्वी फिरे चिर जीवे, महा उदास तपी सरथी वे, अगन माए होमत प्राण, कनक असो है वर भूमदान, न्योली कर्म करे बहु आसन, जैन मार्ग संयम असाधन, निमग निमग कर श्री कटावे, तो भी हूँ मैं मेल न जावे, हर के नाम संसर कछ नाए, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे, मन कामना तीर्थ दे छुटे, गर्भ गुमाना मन से हुटे, सोच करे दिनस अर रात, मन की मलना तन ते जात, इस देही को बहु साधना करे, मन ते कब होना भिख्या टरे, जल तो वह बहु देह अनीत, शुद्ध कहा होय काचे पीत, मन हर के नाम की महिमा ऊंच, नानक नाम उधरे पत बहुमूच, बहुत सियाणप जम का पहु व्यापे, अनक जतन कर कृष्ण न त्रापे, पेख अनेक अग्नि बुझे, कोट उपा उधर गि सीझे, छूटस नाही ऊब पयाल, मोहे व्यापे माया जाल, अवर कर तूत सगली जमडाने, गोविंद भजन विनती नहीं माने, हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोले सहज पाए, चार पदार्थ जे को मांगे, साधना की सेवा लागे, जे को अपना दुख मिटावे, हर हर नाम हृदय सदगावे, जे को अपनी शोभा लो रह, साध संग एहो मैं छोरे, जे को जन्म मरण ते डरे, साधना की सरनी परे, जी जन को प्रभदस प्यासा, नानकता के बल बल जासा, सगल पुरुख में पुरुख प्रधान, साध संग जा का मिटे अभिमान, आपस को जो जाने नीचा, सौ गनिये सबसे ऊंचा, जाका मन हो सगल कीरीना, हर हर नाम तिन का हटकट चीना, मन अपने ते बुरा मिटाना, पेख है सगल सृष्ट साजना, सुख दुख जन समृष्टेता, नानक पाप पुन नहीं लेपा, निर्तन को तन तेरो नाओ, निथावे को नाओ तेरा थाओ, निमाने को प्रभ तेरो मान, सगल कटा को देवो दान, करण करावन हार स्वामी, सगल कटा के अंतर जामी, अपनी गत मित जानू आपे, आपन संग आप प्रवराते, तुमरी उस्त तुम ते होए, नानक और ना जानस होए, सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल करम, सगल क्रिया में उत्तम क्रिया, साध संग दुर्मत मल हिरिया, सगल उद्दम में उद्दम पला, हर का नाम जपो जी सदा, सगल वाणी में अमृत वाणी, हर को जस सुन रसन बखानी, सगल थान ते ओ उत्तम थान, नानक जे कट बस है हर नाम सलोक, निर्गुण यार इनानया, सो प्रभ सदा समाल, जिनकी आतिशी तिरख, नानक निभिनाल। अश्वरी रमैया के गुंचेत प्राणी, कवन मूर्ते कवन दिष्टानी, जिन तू साज सवार सिगारया, गर्भ अगन में जिन उबारया, बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध, पर जो बन भोजन सुख सूद, बिरद पया ऊपर साख सैन, मुख अपया बैठ को दैन, एहो निर्गुण गुण कछु न बुझे, बख्श ले हो तो नानक सिजे, जे प्रसाद तर ऊपर सुख बसे, सुख प्रात मीत बनता संघसे, जे प्रसाद पी वैसी तल जला, सुखदाई पवन पावक अमूला, जे प्रसाद भोगे सब रसा, सगल सामग्री संग सात बसा, दीने हस्त पाव करन नेत्र रसना, तिसे त्याग अवर संरचना, ऐसे दोख मूड अंधव्यापे, नानक काढ़ ले हो प्रभ आपे, आद अंत जो राखनहार, तिस्यो प्रीत न करे गवार, जाकी सेवा नव निध पावे, तास्यो मूड़ा मन नहीं लावे, जो ठाकुर सद सदा हजूरे, ताको अंधा जानत दूरे, जाकी टहल पावे दरगह मान, किसे विसारे मुग्ध अजान, सदा सदा एहु पुहलनहार, नानक राखनहार अपार, रतन त्याग कौडी संगरचे, साच छोड़ झूठ संग मचे, जो छड़ना सो अस्थिर कर माने, जो हो अनसो दूर पराने, छोड़ जाए तिसका श्रम करे, संग सहाय तिस पर हरे, चंदन लेप उतारे तोए, गर्दव प्रीत पसम संग होए,
अनुकूप में पतत बिगराल, नानक काढ़ लेहो प्रभ दयाल। करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। बाहर पेख अंतर मल माया, छपस नाही कछ करे छपाया। बाहर ज्ञान ध्यान स्नान, अंतर व्यापे लोभ स्वान। अंतर अग्न बार्तन स्वाहा, गल पात्र कैसे करे अथा। जाके अंतर बसे प्रभ आप, नानक तेजन सहज समात। सुन अंधा कैसे मार्ग पावे, कर गहले हो ओढ़ निभावे। कहाँ बुझारत बुझे डोरा, निष्कहिए तो समझे पोरा। कहाँ बिसनबद गावे गुंग, जतन करे तो फीसुर भंग। कह पिंगुल पर्वत पर पावन, नहीं होत ऊहा उस गवन। करतार करना में दीन बेनती करे, नानक तुमरी कृपा तरे। संग साहि सो आवे न चीत, जो बैराई ता सुप्रीत। बलुआ के ग्रह पीतर बसे, अनंत केल माया रंग रसे। दृढ़ कर माने मन है प्रतीत, काल न आवे मूढ़े चीत। बैर विरोध काम क्रोध मोह, चोट विकार महालोक त्रोह। या हो जुगत बिहाने कई जन्म, नानक राख ले हो।

ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। सगल समग्री तुम रे सूत्र धारी, तुम ते हो आज्ञाकारी, तुमरी गत में तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। स्लोक देन हार पर छोड़ के लग है अनसुआए, नानक हूँ नसीधी बिन नावे पत जाए। अष्टपदी दस पस्तूले पाछे पावे, एक बस्त कारण भी खोट गवावे, एक पीना दे दस्ती हिरले तो मूड़ा कहू का करे। जिस ठाकुर सुना ही चारा, ताकू की जय सद नमस्कारा, जाके मन लागा प्रभ मीठा, सर्व सुखता हूँ मन उठा। जिस दिन अपना हुक्म मनाया, सर्व थोक नानक तिन पाया। अग्नस्ता हो अपनी निराश, खात पीत वर्त अनंत उलास, अपनी अमान कछु बाहुर साहु ले, अज्ञानी मन रोष करे। अपनी प्रतीत आप ही खोवे, बहुर उसका विश्वास न होवे। जिसकी बस्ती आगे रखे, प्रभु की आज्ञा माने माथे, उससे चौगन करे निहाल, नानक साहिब सदा दयाल। अनक पांत माया के हेत, सर पर होत जान अनेत, वृक्ष छाया स्यों रंग लावे, ओह बिन से ओह मन पछतावे। जो दिस सो चालन हार, लपट रहो थे अंध अंधार, बटाऊ स्यों जो लावे नहे, ताकु हाथ न आवे के। मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई, कर कृपा नानक आप ले लाई। मिथ्या तन तन कुटम संभाया, मिथ्या हो मैं ममता माया, मिथ्या राज जोवन तन माल, मिथ्या काम क्रोध विकराल, मिथ्या रथ हस्ती असो वस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया पे खस्ता, मिथ्या त्रो मोह अभिमान, मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान। अस्थिर भगत सात की शरण, नानक जब जब जी वे हर के चरण। मिथ्या श्रवण पर निंदा सुने है, मिथ्या हस्त पर द्रव को हिरे, मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रिय रूपाद, मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद, मिथ्या चरण पर विकार को तावे, मिथ्या मन पर लोभ लुभावे, मिथ्या तन नहीं पर उपकारा, मिथ्या वास लेत विकारा। बिन बूझे मिथ्या सब पहे, सफल दे नानक हर हर नाम लय। बिरथी साकत की आरजा, साच बिना कह होवत तूचा, बिरथा नाम बिना तन अंध, मुख आवता के दुर्गंध। बिन सिमरन दिन रहन बिरथा बिहाय, मेघ बिना ज्यों खेती जाए। गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, ज्यों के पन के निरारथ दाम। तन तन तेजन जिह कट बस्यो हर नाओ, नानकता के बल बल जाओ। रहत अवर कछ अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुखो गंडलावत। जानन हार प्रभु प्रवीण, बाहर पेख न काहु कीन। अवर उपदेश अपना करे, आवत जावत जन में मरे। जिसके अंतर बसे निरंकार, तिसकी सीख करे संसार। जो तुम पाने तिन प्रभ जाता, नानक उंजन चरण प्राता। करो बेनती पार हम सब जाने, अपना किया आप पहमाने। आप है आप करत निबेरा, किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा। उपाव स्यान सरल ते रहत, सब कुछ जाने आत्म की रहत। जिस पावे तिस ले लड़ लाए, थान थनंतर रह।

योग जे प्रसाद पाठ पटंबर अढ़ावे तिसे त्याग कथ अवर लुभावे जे प्रसाद सुख तेज सोई जय मन आठ पहर ता का जस गावि जय जे प्रसाद तुझ सब को माने मुक्ता को जस रसन बखाने जे प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याय केवल पावहं प्रभु जी जपत दरगह मान पावे नानक पत से ती कर जावे जे प्रसाद आरोग कंचन देही लिवलावो तिस राम स्नेही जे प्रसाद तेरा ओला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके मन सरनी पर ठाकुर प्रभुता के जे प्रसाद तुझको ना पहुँचे मन सास सास सिमरो प्रभु ऊचे जे प्रसाद पाए दुर्लभ देहे नानक सांसी भगत करे जे प्रसाद आप भुवन पहरी जय मन तिस सिमरत को आलस की जय जे प्रसाद असुर हस्त असवारी मन तिस प्रभु को कब हूँ ना बिसारी जे प्रसाद बाग में लख तना राख प्रोहे प्रभु अपने मना जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठत सब किसे तिहाई किसे तिहाई जो एक अलख है इहा उहा नानक तेरी रख है जे प्रसाद करे पुन बहुदान मन आठ पहर कर किसका ध्यान जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभु को साथ साथ पितारी जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभु सिमरो सदा अनूप जे प्रसाद तेरी नेकी जात सो प्रभु सिमर सदा दिन रात जे प्रसाद तेरी पत रह गुर प्रसाद नानक जस कह जे प्रसाद सुने करन नाद जे प्रसाद पेखे बिस्माद जे प्रसाद बोले अमृत रसना जे प्रसाद सुख सहजे बसना जे प्रसाद हस्त कर चले जे प्रसाद संपूर्ण फले जे प्रसाद परम गत पावे है जे प्रसाद सुख सहज समावे ऐसा प्रभु त्याग अवर कत लागो गुरु प्रसाद नानक मन जागो जे प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभु को मूल ना मन हो विसार जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तू ता को जाप जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे जे प्रसाद तू पावे साच रे मन मेरे तू ता सुराच जे प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपै जप सोए आप जपाए जपै सो नाओ आप गवाए सो हर गुन गाओ प्रभु कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल बिगास प्रभु सो प्रसन्न बसे मन सोए प्रभु दया ते मत उत्तम होए सर्व निधान प्रभु तेरी माया आपको कछु ना किन्हू लया जित जित लावो तित लगे हर नाथ नानक इनके कछु न हाथ सलोक अगम अगाध पार रन सोए जो जो कहे सो मुक्ता होए सुनमीता नानक बिनवंता साध जना की अचर्ज कथा अष्टपदी साध के संग मुख उज्जल होत साध संग मल सरलीक होत साध के संग मिटे अभिमान साध के संग प्रगट है सो ज्ञान साध के संग बुझे प्रभु नेरा साध संग सब होत निबेरा साध के संग पाए नाम रतन साध के संग एक ऊपर जतन साध की महिमा पर न कौन प्राणी नानक साध की शोभा प्रभु माहे समानी साध के संग अगोचर मिले साध के संग सदा पर खुले साध के संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पहुंचा साध संग होए सबकी रेन साध के संग मनोहर बैन साध के संग ना का तू तावे साध संग अस्थित मन पावे साध के संग माया ते भिन्न साध संग नानक सब सो प्रसन्न साध संग दुश्मन सब मीत साधु के संग महापुनीत साध संग किस्यो ना ही बैर साध के संग ना बीघा पैर साध के संग ना ही कुमंदा साध संग जाने परमानंदा साध के संग ना ही होताप साध के संग तजे सब आप आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बन आई साध के संग न कबू तावे साध के संग सदा सुख पावे साध संग बस अगोचर लह साधु के संग अजर सह साध के संग बस स्थान ऊंचे साधु के संग महल पहुँचे साध के संग दृढ़ सब धर्म साध के संग केवल पार ब्रह्म साध के संग पाए नाम निधान नानक साधु के कुर्बान साध के संग सब कुल उधारे साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तारे साधु के संग सो तन पावे जिस संते सब को वरसावे साध संग धर्म राय करे सेवा साध के संग शोभा सुर देवा साधु के संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन साध के संग सर्व थान गम नानक साध के संग सफर जन्म साध के संग नही कछ काल दर्शन भेटत होत निहाल साध के संग कलुख हथहरे साध के संग नरक प्रहरे साध के संग इहां उहां सोहेला साध संग बिछरत हर मेला जो इच्छे सोई फल पावे साध के संग ना बिरखा जावे पार ब्रह्म साध रिद बसे नानक उधरे साध सुन रसे साध के संग सुनो हर नाओ साध संग हर के गुन गाओ साध के संग ना मनते बिसरे साध संग सर पर निस्तरे साध के संग लग गए प्रभु मीठा साधु के संग काट कट डीठा साध संग पहे आज्ञाकारी साध संग गत पही हमारी
साध के संग मिटे सब रोग, नानक साध कहते संजोग, साध की महिमा वेद न जान है, जेता सुने तेता बखियन है।

जैसे तर ऊपर आकाश। ब्रह्मज्ञानी के मित्र शत्रु समान, ब्रह्मज्ञानी के नाही अभिमान। ब्रह्मज्ञानी उससे ऊंचा मन अपने है सबसे नीचा। ब्रह्मज्ञानी से जन पहे नानक जिन प्रभु आप करे। ब्रह्मज्ञानी सगल की रीना आत्म रस ब्रह्मज्ञानी चीना। ब्रह्मज्ञानी की सब ऊपर माया ब्रह्मज्ञानी से कछ बुरा ना पाया। ब्रह्मज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्मज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी। ब्रह्मज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्मज्ञानी की निर्मल जुगता। ब्रह्मज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्मज्ञानी एक ऊपर आस ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्मज्ञानी के गरीबी समाह ब्रह्मज्ञानी प्रभु उपकार उमाह। ब्रह्मज्ञानी के नाही तंदा ब्रह्मज्ञानी ले तावत बंधा। ब्रह्मज्ञानी के होए सुफला ब्रह्मज्ञानी सुफल फला। ब्रह्मज्ञानी संग सगल उधार नानक ब्रह्मज्ञानी जपे सगल संसार। ब्रह्मज्ञानी के एक रंग ब्रह्मज्ञानी के बसे प्रभु संग। ब्रह्मज्ञानी के नाम धार ब्रह्मज्ञानी के नाम परवार। ब्रह्मज्ञानी सदा सद जागत ब्रह्मज्ञानी अनुभूत त्यागत। ब्रह्मज्ञानी के मन परमानंद ब्रह्मज्ञानी के कर सदा आनंद। ब्रह्मज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म का वेता ब्रह्मज्ञानी एक संहिता। ब्रह्मज्ञानी के होए अचिंत ब्रह्मज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्मज्ञानी जिस करे प्रभु आप ब्रह्मज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्मज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइये ब्रह्मज्ञानी को बल बल जाइये। ब्रह्मज्ञानी को खोज महेश्वर नानक ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्मज्ञानी की कीमत ना है ब्रह्मज्ञानी के सगल मन माहे। ब्रह्मज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्मज्ञानी को सदा आदेश। ब्रह्मज्ञानी का कथया न जाए अदाकर ब्रह्मज्ञानी सर्व का ठाकुर। ब्रह्मज्ञानी की मित कौन बखाने ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने।

ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी सलोक, उड़त हर जो अंतरनाम, सर्व में देख भगवान, निमख निमख ठाकुर नमस्कार, नानक ओ अपर सगल निस्तार, अष्टपदी मिथ्या ना ही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्स, परक्रिय रूप न पेख नेत्र, साध के टहल संतंग हेत, करना सुने का हो की निंदा, सब ते जान आपस को मंदा, गुरु प्रसाद विख्या पर हर है, मन की वासना मन से तर है, इंद्रिय जित पंच दोख ते रह, नानक कोट मध्य को ऐसा अपरस, वैष्णो सो जित ऊपर सो प्रसन्न, विसन की माया ते होए पहन, कर्म करत हो वह नहीं कर्म, इस वैष्णो का निर्मल धर्म, काउ फल की इच्छा नहीं बाच, केवल भगत कीर्तन संग्राच, मन तन अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल, आप दृढ़ अवर नाम जपावे, नानक हो वैष्णो परम गत पावे, भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्याग दुष्ट का संग, मन से बिन से सगला परम, कर पूज सगल पार ब्रह्म, साध संग पापा मन खोवे, तिस भगवती कीमत उत्तम होवे, भगवंत की टहल करे नित नीत, मन तन अर्पय विसन परीत, हर के चरण हृदय बसावे, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे, सो पंडित जो मन प्रबोध है, राम नाम आत्म में शुद्ध है, राम नाम सार रस पीवे, उस पंडित के उपदेश जग जीवे, हर की कथा हृदय बसावे, सो पंडित फिर जोन न आवे, वेद पुराण सिमरत बूझे मूल, सूखम में जाने अस्थूल, सहोवरना को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा आदेश, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चहोवरना में जपे को नाम, जो जो जपे तिस की गत होए, साध संग पावे जन कोए, कर कृपा अंतर उतारे, पस प्रेत मुग्ध पात्र को तारे, सर्व रोग का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम, काहो जुगत किते न पाइये धर्म, नानक किस मिले जिस लिखिया तुर करम, जिसके मन पार ब्रह्म का निवास, जिसका नाम सत राम दास, आत्म राम तिस नदरी आया, दास संतन पाए तिन पाया, सदा निकट निकट हर जान, सो दास दरगह परवान, अपने दास को आप कृपा करे, तिस दास को सब सोझे परे, सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक रामदास, प्रभु की आज्ञा तम हितावे, जीवन मुक्त तो कहावे, तैसा हरख तैसा उस सोग, सदा अनंत है ना ही वियोग, तैसा सुवरण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिखाटी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंक तैसा राजान, जो वर्ता ऐसा जुगत, नानक ओ पुरुष कहिए जीवन मुकत, पार ब्रह्म कह सगले ठाओ, जित जित कर राख है तैसा तिननाओ, आपे करण करावन जोग, प्रभु पावे सोई फुन होग, पसरियो आप होए अनत तरंग, लखे न जाहे पारवन के रंग, जैसी मत दे तैसा प्रगास, पारवन करता अविनाश, सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक पहे निहाल, सलोक पुस्तक कर है अनेक जन, अंत न पारावार, नानक रचना प्रवृत्ति, बहुविध अनेक प्रकार, अष्टपदी कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट पहे तीर्थ वासी, कई कोट वन प्रमे उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपी सर होते, कई कोट आत्म ध्यान तार है, कई कोट कब काब विचार है, कई कोट नवतन नाम त्याव है, नानक करते का अंत ना पाव है, कई कोट पहे अभिमानी, कई कोट अंत अज्ञानी, कई कोट कृपन कठोर, कई कोट अपग आत्म निकोर, कई कोट पर दर्ब को ही रहे, कई कोट पर दुख न करे, कई कोट माया श्रमा है, कई कोट प्रदेश प्रमा है, जित जित लावो होते तित लगना, नान करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस होगी, कई कोट पंखी सर्प उपाय, कई कोट पाथर बिरख निप जाए, कई कोट पवन पानी वैसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट सत्यर सूर नक्षत्र, कई कोट देवदानव इंद्र सिर छत्र, सगल सामग्री अपने सूत तार है, नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार है, कई कोट राजस्तामस तातक, कई कोट वेद पुराण सिमृत अर्थास्त, कई कोट किए रतन समुद, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चिरजी वह, कई कोट गिरी मेर सुवरंथी वह, कई कोट जग किनर पिसाच, कई कोट भूत प्रेत सुकर मृगाच, सबते नेर सब होते दूर, नानक आप अलिप्त रह भरपूर,
कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुरक निवासी, कई कोट जन्मै जीवै मरह, कई कोट बहुजोनी फिरै, कई कोट बैठत ही खाहे, कई कोट कालै सक पाहे, कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया में चिंत, जय जय पहना तह तह राखे, नानक सब किज प्रभ के हाथे, कई कोट पहे बैरागी, राम नाम संग तिन लिव लागी, कई कोट प्रभु को खोजनते, आत्म मह पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रभु प्यास, तिन को मिलियो प्रभु अविनाश, कई कोट मांगे सत्संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनको होय आप सो प्रसन्न, नानक ते जन सदा तन तन, कई कोट खानी अरखंड, कई कोट आकाश ब्रह्मंड, कई कोट होय अवतार, कई दिवस किनो विस्तार, कई बार पसरियो पासार, सदा सदा एक एकंकार, कई कोट की ने वह भांत, प्रभ ते होय प्रभु माहि समात, ताका अंत न जाने कोये, आपे आप नानक प्रभ सोय, कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन होवत आत्म प्रगास, कई कोट तत् के बेते, सदा निहार एको नेत्रे, कई कोट नाम रस पीव है, अमर पहे तद तद ही जीव है, कई कोट नाम गुण गाव है, आत्म रस सुख सहज समाव है, अपने जन को सास सा समारे, नानक ओए परमेश्वर के प्यारे सलोक, करण कारण प्रभ एक है, दूसर नाही कोए, नानक किस बलहारण है, जल थल महियल सोए, अष्टपदी, करण करावन करने जोग, ज्योतिष पावे सोई होग, खिन में थाप उथापन हारा, अंत नहीं किस पारा वारा, हुक्मे तार अदर रहावे, हुक्मे उपजे हुक्म समावे, हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार, हुक्मे अनक रंग प्रकार, कर कर देखे अपनी वड्याई, नानक सब में रह समाई, प्रभु पावे मानुकत पावे, प्रभु पावे ता पाथर तरावे, प्रभु पावे बिन सास तिराखे, प्रभु पावे ता हर गुण पाखे, प्रभु पावे ता पतत उधारे, आप करे आपन विचारे, दोहा सिर्या का आप स्वामी, खेले विद से अंतर जामी, जो पावे

नानक गर्भ गले अष्टपदी जिसके अंतरराज अभिमान सोन रख पाती होवत स्वान। जो जाने मैं जो बनवंत सो होवत विष्टा का जंत आपस को क्रमवंत कहावे जन्म मरे बहु जोन परमावे। तन पूम का जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा अज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे नानक इहा मुक्त आगे सुख पावे। तनवंता होए कर गरबावे कर्म समान कछ संग न जावे बहुलस्कर मानक ऊपर करे आस फल पितरता का होए विनाश। सबते आप जाने बलवंत किन में होए जाए पसमंत

नानक सो जनसदा अरोग जो मंदर को थामे थमन त्यों गुर का चोड मन है अस्मन जो पाखाण नाव चढ़तरे प्राणी गुर चरण लगत निस्तरे जियो अंधकार जी पर प्रगास गुरदर्शन देख मन होय विगास जो महा उद्यान में मार्ग पावे त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावे तिन संतन की बात छो तूर नानक की हरलो चापूर मन मूर्ख कहे बिल लाइये पूर्व लिखे का लिखिया पाइये दुख सुख प्रभ देवनहार और त्याग तू तिसे चितार जो कुछ करे सोई सुखमान पूला का फिरे अजान कौन बस आई तेरे संग लपट रहे हो रस लोभी पतंग राम नाम जप हृदय माहे नानक पत्ते थी कर जाहे जिस वखर को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया तज अभिमान ले हो मन मोल राम नाम हृदय में तोल लाद खेव संत है संचाल और त्याग बिखिया जंजाल तन तन कह सब कोए मुख उज्जल हर दर गए सोए एह वापार बिरला वापार है नानक ताके सद बलिहार है चरण साध के तोहे तोहे पियो अर्प साध को अपना जियो साध की तोहर करो स्नान साध ऊपर जाइए कुर्बान साध सेवा वट पहगी पाइये साध संग हर कीर्तन गाइये अनक विघन थे साधु राखे हर गुण गाय अमर दृष साखे ओट गही संत दर आया सर्व सुख नानक से पाया मृतक को जीवा लनहार पोखे को देवत आधार सर्व निधान जा की दृष्टि माहे पूर्व लिखे का लहना पाए सब किस किसका ओ करने जोर तिस बिंदु सर हो आना होग जप जन सदा सदा दिन रहनी सबसे ऊंच निर्मल ए करनी कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सोजन निर्मल थिया जाके मन गुर की प्रतीत तिस जन आवे हर प्रवचीत भगत भगत सुनिए तेह लोए जाके हृदय एक होए सच करनी सत्ता की रहत सच हृदय सतमुख कहत साची दृष्ट साचा आकार सच वर्तै साचा पासार पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सोजन सच समाता सलोक रूप न रेख न रंग किछ त्रे गुण ते प्रभ पिन इसे बुझाए नानका जिस हो वै सो प्रसन्न अष्टपदी अविनाशी प्रभ मन में राख मानुख की तू प्रीत त्याग तिसे प्रय नाही किछ कोय सर्व निरंतर एको सोए आपे बिना आपे दाना जहर गंभीर गहीर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निधान दयाल बख्शंद सार तेरे की चरनी पाओ नानक कै मन एहो अनुराओ मनसा पूर्ण सरना जोग जो कर पाया सोई होग हरन परम जाका नेत्र खोर तिसका मंत्र न जाने होर आनंद रूप मंगल सद जाके सर्वथोक सुनिए करता के राज में राज योग में जोगी तप में तपी सरगृह सत में भोगी क्या तह भगते सुख पाया नानक किस का किने अंत न पाया जा की लीला की नित नाहे सगल देव हारे अवगाहे पिता का जन्म के जाने पूत सगल परोई अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे जनदास नाम यह वैसे सह गुण में जाकू परमाए जन्म मरे फिर आवे जाए ऊंच नीच तिस के स्थान जैसा जना वे तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना भेख करे इक रंग नाना बिदकीनो विस्तार प्रभ अवनासी एक अंकार नाना चलित करे खिन माहे पूर रहो पूर्ण सब ठाए नाना विद कर बनत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब कर तिस के सब तिस के ठाओ जब जब जी वे नानक हरनाओ नाम के तहरे सगले जंत नाम के तहरे खंड ब्रह्मंड नाम के तहरे सिमरत वेद पुराण नाम के तहरे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के तहरे आगास पाताल नाम के तहरे सगल आकार नाम के तहरे पुरिया सब पवन नाम के संग उधरे संसरवन कर कृपा जिस अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जनगत पाए रूप सत जाका सत स्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जा की बाणी सतपुरख सब माहे समानी सत्कर्म जा की रचना सत मूल सत सत उत्पत सत्कर्णी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सफली सतनाम प्रभु का सुखदाई विश्वास सत नानक गुर से पाई सत वचन साधु उपदेश सत्य जन जाके हृदय प्रवेश सत नित बुझे जे कोई नाम जपता की गत होए आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित गत जिसकी सिर सो कर न हार और न बुझ करत विचार करते की मित न जाने किया नानक ज्योतिष पावे सोवर किया बिस्मन बिस्म पहे बिस्माद जिन बुझे तिस आया स्वाद प्रभु के रंग रात जन रहे गुर के बचन पदार्थ लहे होए दाते दुख काटन हार जाके संग करे संसार जन का सेवक सोवड़ पागी जन के संग एक लिवला
त्यागी गुण गोविंद कीर्तन जन गावे गुरु प्रसाद नानक फल पावे। सलोक आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच अष्टपदी चरण सत सत प्रसन्न हार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत देखन हार नाम सत सत त्यावन हार आप सत सत सत हारी आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभक्ता सुरत सत सत दसुंता बुजन हार को सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए सतरूप हृदय जिन मानया करम करावन तिन मूल पछानया जाके हृदय विश्वास प्रभ आया सत ज्ञान तिस मन प्रगटाया पैते निरपो होए बसाना जिसते उपजया तिस माहे समाना बस्त माहे ले बस्त गड़ाई ताको पिन न कह न जाई बुझे बुझन हार विवेक नारायण मिले नानक एक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर के सेवक के मन प्रतीत ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत ठाकुर को सेवक जाने संग प्रभु का सेवक नाम के रंग सेवक को प्रभु पालन हारा सेवक की राखे निरंकारा सो सेवक जिस दया प्रभु तारे नानक सो सेवक सास सास समारे अपने जन का पर्दा ढाके अपने सेवक की सर पर राखे अपने दास को दे बढ़ाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आपत राखे ताकि गत मित कोई न लाखे प्रभु के सेवक को न पहुँचे प्रभु के सेवक ऊँचे ऊँचे जो प्रभु अपने सेवा लाया नानक सो सेवक दह दिस प्रगटाया नीति कीरी में कल राखे पसंद करे लस्तर कोट लाखे जिसका सास न काढ़त आप ताको राखत देकर हाथ मानस जतन करत बहु पांत जिसके करत

अश्वदी सतगुर सिख की कृ प्रतिपाल सेवक को गुर सदा दयाल सिक्की गुर दुर्मत मल हिरे गुर वचनी हर नाम उचरे सतगुर सिख के बंधन काटे गुर का सिख विकार ते हटे सतगुर सिख को नाम धन दे गुर का सिख वड पागी हे सतगुर सिख का हलत पलत सवारे नानक सतगुर सिख को जी नाल समारे गुर के गृह सेवक जो रह गुर की आज्ञा मन में सह आपस को कर कछ न जनावे हर हर नाम हृदय सद त्यावे मन बेचे सतगुर के पास इस सेवक के कार्य रास सेवा करत हुए नेकामी किसको होत प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जिस आप करे नानक सो सेवक गुर की मतले बीस विश्व गुर का मन माने सो सेवक परमेश्वर की गत जाने सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ अनक बार गुर को बल जाओ सर्व निधान जी का दाता आठ पहर पार ब्रह्म रंग दाता ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म एक है आप नहीं कस परम सह स्यान पलया न जाइये नानक ऐसा गुरुवड़ भागी पाइये सबल दर्शन पेशत पुनीत परसत चरण गत निर्मल रीत पेटत संग्राम गुण रवे पार्वण की दर गय गवे सुनकर बचन करन आघाने मन संतोख आत्म पतियाने पूरा गुरु अख्यो जाका मंत्र अमृत दृष्ट पेखे हुए संत गुण बेअंत की मत नहीं पाए नानक जिस पावे तिसलय मिलाए देवा एक पुस्तक अनेक सत्पुरुष पूर्ण विवेक काहू बोलना पहुँचत प्राणी अगम अगोचर प्रभ निर्वाणी निराहार निर्वय सुखदाई ताकि कीमत किने न पाई अनक भगत बंधन नित करह चरण कमल हृदय सिमरह सदवलहारी सतगुर अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने यो हर रस पावे जन कोए अमृत पीवे अमर सो होए उस पुरुष का ना ही कदे विनाश जाके मन प्रगटे गुणतास आठ पहर हर का नाम ले सच उपदेश सेवक को दे मोह माया के संग ना ले मन में रखे हर हर एक अंधकार दीपक प्रगासे नानक परम मोह दुख तहनासे सप्तमाए ठान वर्ताई अनंत पया दुख नाठे पाई जन्म मरण के मिटे अंदेसे साधु के पूर्ण उपदेशे पहुँ चुका निरपो हुए वसे सगल व्याध मन से खेन से जिसका साथ इन कृपा तहारी साध संग जप नाम उरारी पाई चुके परम गवन सुन नानक हर हर जस्रवन निर्गुण आप सरगुण पियो ही कला तहर जिन सगली मोही अपने चरित प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिंदु जाना ही कोए सर्व निरंतर एको सोए ओत पोत रवया रूप रंग पहे प्रगास सात के संग रच रचना अपनी कल तहारी अनक बार नानक बलहारी सलोक साथ न चाले बिन भजन बिख्या सगली चार हर हर नाम कमावना नानक एहो तनसार अष्टपदी संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अवर उपाव सब मीत विसारो चरण कमल हृदय में उतारो करण कारण सो प्रभु समरथ दृढ़ कर गहो हो नाम हरवथ एहो तन संचो हो वो भगवंत संत जना का निर्मल मंत्र एक आसरा खू मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन को चार कुंट उठतावे सो तन हर सेवा ते पावे जिस सुख को नित बात सो सुख साधु संग प्रीत जिस शोभा को करे पली करनी सा शोभा पजहर की सरणी अनक उपावी रोग न जाए रोग मिटे हर अव खदलाए सर्व निधान में हर नाम निधान जप नानक दरगह प्रमाण मन प्रभो दो हर कहनाए दय विस्तावत आवैठाए आपको विघन न लागे कोए जाके हृदय बसे हर सोए करताती ठांडा हरनाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ पौबिन से पूर्ण हुए आस भगत पाए आत्म प्रगास चित कर जाए बसे अविनाशी कहो नानक का टीजम फांसी सत विचार कहे जन साचा जन्म मरे सो का चो काचा आवागमन मिटे प्रसेव आप त्याग शरण गुरुदेव एवर तन जन्म का हो उधार हर हर सिमर प्राण आधार अनक उपाव न छूटन हारे सिमरत सा सतभेद विचारे हर की भगत करो मन लाए मन बंछत नानक फल पाए संगना चालस तेरे तना तो क्या लपटावे मूर्ख मना सुतमीत कुटुंब अर्बनता इनते कहो हो तुम कौन कना था राज रंग माया विस्तार इनते कहो हो कौन छुटकार अस हस्ती रथ असवारी झूठा डंप झूठ बासारी जिंदिए तिस बुझे न बिगाना नाम विसार नानक पछताना गुर की मत तूले इयाने भगत बिना भो डूबे सियाने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत चरण कमल राखो मन माहे जन्म जन्म के किल बिक जाहे आप जप हो औरा नाम जपावो सुनत कहत रहत गत पावो सार पूत सत हर को नाओ
सहज सुपाय नान गुन गाओ, गुन गावत तेरी उतरस मैल, बिनस जाए हो मैं बिख फैल, होवे अचिंत बसै सुख नाल, सास ग्रास हर नाम समाल, छाड़ त्यानप सगली मना, साध संग पावे सच तना, हर पुंजी संच करो व्यवहार, इहां सुख दरगह जयकार, सर्व निरंतर एको देख, कहु नानक जाके मस्तक लेख, एको जप एको साला है, एक सिमर एको मन आहे, एकस के गुण गाओ अनंत, मन तन जाप एक भगवंत, एको एक एक हर आप, पूरन पूर रहो प्रव्याप, अनक विस्तार एक ते भये, एक अराध परा छट गए, मन तन अंतर एक प्रवराता, गुर प्रसाद नानक इक जाता सलोक, फिरत फिरत प्रभ आया, परया तो सरनाए, नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाए, अश्वरी जाचक जन जाचे प्रवदान, कर कृपा देवो हर नाम, साधना की मांगो तूर, पार ब्रह्म मेरी सरधापुर, सदा सदा प्रभु के गुण गाओ, सास सास प्रभु तुम्हें तिहाओ, चरण कमल सो लागे प्रीत, भगत करो प्रभु की नित नीत, एक

पूरन पुरख नहीं डोलाने, सुपर परे प्रेम रस रंग, उपजे चाव साध के संग, परे शरण आन सब त्याग, अंतर प्रगास अनदिन लिवलाग, बड़भागी जपया प्रभ सोए, नानक नाम रते सुख होए, सेवक की मनसा पूरी पही, सतगुर ते निर्मल मत लई, जन को प्रभ होयो दयाल, सेवक कीनो सदा निहाल, बंधन काट मुकत जन पहया, जन्म मरण दुख परम गया, इच पुण्य श्रद्धा सपूरी, रव रहा सत्संग हजूरी, जिसका साथी लिया मिलाए, नानक भगति नाम समाए, सो क्यों बिसरे जे काल न पहने, सो क्यों बिसरे जे किया जाने, सो क्यों बिसरे जिन सब कुछ दिया, सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया, सो क्यों बिसरे जे अगन में राखे, गुर प्रसाद को बिरला लाखे, सो क्यों बिसरे जे बिखते काढ़े, जन्म जन्म का टूटा गाढ़े, गुरपुरे तत ए बुझाया, प्रभ अपना नानक जन त्याया, साजन संत करो एह काम, आन त्याग जपो हर नाम, सिमर सिमर सिमर सुख पावो, आप जपो अवर है नाम जपावो, भगत पाए त्रिये संसार, बिन भगति तन हो सिछार, सर्व कल्याण सुख निद नाम, बूढ़त जात पाए विश्राम, सगल दुख का होवत नास, नानक नाम जपो गुणतास, उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ, मंथन अंतर एही सुआओ, नेत्र उपेख दर सुख होए, मन बिरसे साध चरंत होए, भगतना के मंथन रंग, बिरला को उपावे संग, एक बस दिजय करमाया, गुरु प्रसाद नाम जपलाया, ताकि उपमा कहीं न जाए, नानक रहया सर्व समाए, परम बख्शन दीन दयाल, भगत वचल सदा कृपाल, अनाथ नाथ गोविंद गोपाल, सर्व कटा कर्त प्रतपाल, आदि पुरुष कारण करतार, भगत जना के प्राण आधार, जो जो जो पैसो होए पुनीत, भगत पाए लावे मन हीत, हम निर्गुण यार नीत अजान, नानक तुम्हरी शरण पुरुष भगवान, सर्व वैकुंठ मुकुट मोख पाए, एक निमक हर के गुण गाए, अनक राज भोग बढ़े आई, हर के नाम की कथा मन पाई, बहु भोजन का पर संगीत, रसना जपति हर हर नीत, फली सुकरनी शोभा धनवंत, हृदय बसे पूर्ण गुरमंत, साध संग प्रभ देहो निवास, सर्व सुख नानक प्रगास, सलोक सरगुण निर्गुण निरंकार, सुन समाधि आप, आपन किया नानका, आपे ही फिर जाप, अष्टपदी जब अकार एह कछना दृष्टेता, पाप पुन तब कहते होता, जब तारी आपन सुन समाध, तब बैर विरोध की संग कमात, जब इसका वर्ण चेह न जापत, तब हरख शोक कहो किसे व्यापत, जब आपन आप पार ब्रह्म, तब मोह कहाँ किस होवत परम, आपन खेल आप पर तीजा, नानक करने हार न दूजा, जब होत प्रभ केवल तनी, तब बंद मुकुट कहो किस होगनी, जब एक कह हर अगम अपार, तब नरक सुरग कहो कौन अवतार, जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए, तब शिव सकत कहो किस छाए, जब आप कहे आप अपनी ज्योत करे, तब कवन निडर कवन खत डरे, आपन चलित आप करने हार, नानक ठाकुर अगम अपार, अविनाशी सुख आपन आसन, सह जन्म मरण कहो कहा विनाशन, जब पूर्ण करता प्रभ सोए, तब जम की त्रास कहो किस होए, जब अविगत अगोचर प्रभ एका, तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा, जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे, तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे, आपन आप ही अचर जा, नानक आपन रूप आप ही ऊपर जा, जय निर्मल पुरुष पुरुष पथ होता, तह बिन मैल कहो क्या होता, जय निरंजन निरंकार निर्वाण, तह कौन कोमान कौन अभिमान, जय स्वरूप केवल जगदीश, तय छल छिद्र लगत कहो कीस, जय ज्योत रूपी ज्योत संग समावे, तय किसे भूख कौन तृप्तावे, करण करावन करने हार, नानक करते का नहीं सुमार, जब अपनी शोभा आपन संग बनाई, तब कवन माय बाप मित्र सुत पाई, जय सर्व कला आपे प्रवीन, है वेद कतेब कहा कूचीन, जय आपन आप उतारे, तो सगन अपसगन कहा विचारे, जय आपन ऊंच आपन आप नेरा, तय कौन ठाकुर कहन कहिए चेरा, बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद, नानक अपनी गत जानू आप, जय अचल अछेद अपेद समाया, ऊहा किसे व्यापत माया, आपस को आपे आदेश, तय गुण का न ही प्रवेश, जय एक कह एक एक भगवंता, तय कौन अचिंत किस लागे चिंता, जय आपन आप पतियारा, तय कौन कथे कौन सुनने हारा, बहु बेअंत ऊंचते ऊंचा, नानक आपस को आपे पहुंचा,
जय आप रचियो परपंच आकार तह गुण में कीनू विस्तार पाप कुन तय पही कहावत को नरक को सुरग बंछावत आल जाल माया जंजाल होमे मोह परम पै पार दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार कियो बखियान आपन खेल आप कर देखे खेल संकोच है तो नानक एक है जय अभिगत भगत है आप जय पत्र पासा संत प्रताप दुख पाप का आपे तनी उनकी शोभा उन्हों बनी आपे कौतक करे अनंत चोज आपे रस पोगन निजोग जिस पावे तिस आपन ना लावे जिस पावे तिस खेल खिलावे बेसुमार अथा अगनत अतोल्य।

0: अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सा सा सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद आस अनित्या गो तरंग संतना की तूर मन मंग आप छोट बेंती करो साध संग अगन सागर करो हर तन के फर ले भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग पज परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित चित वो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख पंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का एह आधार उत्तम श्लोक साध के वचन अमलीक लाल एह रतन सुनत कमावत होत उधार आप तरह लोक कह निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहद वाजय सुन सुन अनंत करे प्रभु गाजय प्रगटे गोपाल महंत के माथे नानक उधरे तिन के साथे शरण जोग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभु आप मिलाए मिट गए वैर पहे सवरेन अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न पहे गुरुदेव पूरन होए सेवक की सेव आल जंजाल विकारते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभु तारी नानक निभि खेप हमारी प्रभु की उस्तत करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसे सो होत निधान सर्व इच्छाता की पूरन होए प्रधान पुरुष प्रगट सब लोए सबते ऊंच पाए स्थान बहुर न होवे आवन जान हर तन खाट चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए केम शांत रिदना निध बुद्ध ज्ञान सर्वते सिद्ध विद्या तप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रगास सबके मद सगलते उदास सुंदर चतर तत् का बेता समदर्शी एक दृष्टेता एह फल तिजन कै मुख पने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एह फल तिजन कै मुख पने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निधान जपे मन कोए सब जुग में ताकी गत होए गुण गोविंद नाम तुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत कै मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटे संत कृपा ते जम ते छुटे जाके मस्तक क्रम प्रभु पाए साध श्रम नानक ते आए जिस मन बसे सुने लाए प्रीत ते जन आवे हर प्रभु चीत जन्म मरणता का दुख निवारे दुर्लभ देह तत्काल उधारे निर्मल शोभा अमृतता की वाणी एक नाम मन माहे समानी दुख रोग बिन से पह परम साध नाम निर्मलता के करम सबते उच्चता की शोभा बनी नानक एह गुण नाम सुखमनी सबते उच्चता की शोभा बनी नानक एह गुण नाम सुखमनी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह।
1: केरबो दी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ये प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सवा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हां कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाने लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे।
2: साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तो आप जी नु पता ही है, जे नहीं ता ओ भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3074 अति फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3075।
1: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी singhsabha2@gmail.com।
3: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.

वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मान योग दातार सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाहिमान गुरु सवारे सत संगी जनों हजूर दे अमृत बचन आप जी ने कीर्तन रूप विच सरवण कीते ने। चल रही अमृत गुरबाणी की विचार अनुसार कल आपां राय बलवंत जी दी रचना तो गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी दी सिफत विच उचारण कीते हुए

सब सुख नाम करता पुरुष हो निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त जुनी सह भंगुर प्रसाद आशा महला पहला वार श्लोक का नाथ श्लोक भी महले पहले के लिए टंडे अस राजे की सुनी।

कड़िया सबे गोपियां पैर कान गोपाल गहने पौन पणी वे शंकर चंद सूर देवतार सगली धरती मन वर्तन सर्व जंजाल नानक मस्ते ज्ञान मोहनी खाए गया जम काल महला।

सुख दारू सुख रोग पया जा सुख ताम न होई। तू करता करना मैं नाही जाहो करी न होई। बलिहारी कुदरत वसिया तेरा अंत न जाई लख्या रहाओ। जात मह जोत जोत मह जाता कल कला भरपूर रहया। तू सच्चा साहिब सिख सवाल्यो जिन की तीसो पार पया। कहो नानक करते किए बातां जो किस करना सो कर।

0: संता रखना पवित्र करिए जी, दोनों हाथ सीधे जोड़ के धन गुरु ग्रंथ है महाराज सच्चे पातशाह जी के चरणों में शीश झुका के बड़े आदर के सत्कार के नाल उच्ची आवाज विच गज के बोलो जी,
1: वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
0: अज के समागम के अंदर आप सिख कौम वापरिया होया छोटा घलूघारा दिवस मना रहे हैं। दुनिया के कोने कोने के दिवस श्रद्धा भावना के नाल मना के कौम के हजार शहीदों श्रद्धा के फुल भेट किए जाते हैं। आनंदपुर की पावन पवित्र धरती से कलंगीधर दशमेश पिता महाराज जी संगत को दर्शन दे रहे हैं। संगत आउंदियां ने, दर्शन करदियां ने, निहाल होंदियां ने, सेवा करके सिमरन करके गुरु जी के बचन सुन के मन दियां खुशियां प्राप्त करदियां ने। एक सिख गुरु चरणों के विच आया, उन्हें आके धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज सच्चे पातशाह के चरणों में नमस्कार की। महाराज ने पूछा, भाई तेरा नाम की है? कहिंदा जी मेरा नाम है तृतीया, तृतीया नाम है। सतगुरु पातशाह कहिंदे दसो की इच्छा लैके आए? हाथ जोड़ के कहने लगे, महाराज मेरे मन की भावना है मैं निष्काम होकर थोड़े चरणों की, थोड़ी संगत की, थोड़े दरबार की सेवा करा। गुरु पातशाह महाराज जी कहने लगे, भाई तृतीया जी इतनी थोड़ी लोड़ नहीं है। इन्ना बचन कहा कि मन उदास हो गया। मैं तो बड़ी इच्छा, मैं तो बड़ी श्रद्धा लेके आया कि महाराज जी तुम ये बचन क्यों किया? कलंगीधर दशमेश पातशाह महाराज जी कहते, पिरथी जी थोड़ी लोड़ इतने नहीं, थोड़ी लोड़ है दुआबे दे, दुआबे जाओ, सिक्खी का प्रचार करो, सिक्खी का केंद्र स्थापित करो। मन खुश हो गया कि महाराज ने मैं सेवा बख्शी। सतगुरु जी को नमस्कार।

आह मियाँ तेरी कवन बढ़ाई जो तू देह सो कहा स्वामी मैं मूर्ख कहन न जाई कोट बह मंडा दे मालक सरकारे को लालम लोक परलोक दा सुख देन वाले गुरसिख दियां सो मनोकामना संपूर्ण करन वाले साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन गोद विच सज बैठे पवित्र आत्मा गुरु की संगत आओ सब तो पहला कलगी वाले पातशाह महाराज जी की बख्शिश दराइए कोई भी रसना बाजी ना रहे सारिया संगत अदब सत्कार आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दे दीवान विच सरबंस दानी कलगीधर पातशाह महाराज उन्हां दे वीर सपुत्र बाबा अजीत सिंह बाबा जुझार सिंह ते चाली सिंह जिन्हां ने चमकौर दी गढ़ी दे विच जोर विखाए ओ प्रसंग कहन जा रहे हां। कलगीधर पातशाह महाराज जी जिस वेले निहंग खां दे घरों अगे तुरे ते किसे सूए ने खबर दिती ओ बाजा वालिया पातशाह ओ तुरिया जाया ओ मगर 10 लाख दा घेरा पै गया। सच्चे पातशाह महाराज भाई दया सिंह नू कहन लगे कोई उच्ची जगह वेख जिन्हों असी चमकौर दी हवेली आने आ एक चौधरी दी हवेली सी। जिस वेले भाई दया सिंह ने दरवाजा खड़काया अंदरों आवाज आई ओ तू कौन आ उन्हें आख्या मैं गुरु दा सिख वा बाजा वाले पातशाह ने तेरी हवेली विच कुछ समा रुकना। उन्हें आख्या ओ सरकार दे बागी आप उजरे ते मेनू उजाड़न आए जे। उस वेले दया सिंह ने आख्या ओ चौधरिया होश कर जिथे मेरे गुरु दे चरण पैजनगे उजड़िया जगह वस जाणगियां। सतगुरु सच्चे पातशाह दे सिख मल्लो मली इस हवेली विच दाखिल होए कुछ सिखां नू हुक्म होया भी तुसीं पहरा दिओ कुछ नू हुक्म होया भी तुसीं आराम करो। इत्थे योगी अल्लाह यार खां लिखदा कई लेट गए जी जिमी पर पोश बिछा कर और पहरा देने लगे कई तलवार उठाकर गोविंद दी सबास हुए खेमों में जाकर देखा तो वहां बैठे हैं गर्दन को झुकाकर है वाहेगुरु वाहेगुरु मुंह से निकलता है तू ही तू तू ही तू मुंह से निकलता। महाराज सच्चे पातशाह अकाल पुरख दे विच लीन हन। मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह जदों डेट क रात गुजरी सच्चे पातशाह तंबू चो बाहर आए किसे सिख नू वेख्या ओ घोड़े ते पिया घोड़ा हिलिया फिर सरकिया दस्तार उतर गई किसे सिख नू वेख्या उन्हें छाती ते हाथ जे रखिया छाती ते बोझ जा बन गया किसे सिख नू वेख्या ओ खबी वखी पिया ओनू सजी करवट लैण दा ही चेता भुल गया। एदे थके मन दे एक चौधरी दी हवेली विच पाया ते महाराज सतगुरु सच्चे पातशाह तंबू चो बाहर आए जोगी अल्लाह यार खां लिखदा जब डेढ़ गड़ी रात गई जिक्रे खुदा में फिर खेमों से निकल आए सरकार हवा में कदमों से टहलते थे मगर दिल था दुआ में ए खुदावंद मैं खुश हूँ तेरी रजा में करतार से कहते थे गोवा रू बरू होकर मैं कल जाऊंगा चमकौर से सुरखरू होकर मालक नाल गली पै गए मालका मैं कल तेरा दिता होया परन इस चमकौर दी गली चो पूरा करके जाऊंगा। सच्चे पातशाह जे किते चमकौर दी गली विच किसे सिख दे सराणे वल्लों दी गुजरे ते महाराज सराणे बह गए ओ सिख दा सिर चुमिया ओ सिख दी दस्तार चुमी महाराज ने अपने सिखां दे गले चुमे आख्या ओ सिखा ए तेरा गला तन है ए तेरे गले दियां अंतड़ियां तन हन जिन्हां ने सवेरे देश दी आजादी वास्ते दुश्मन दा तलवार दा वार इस गले उत्ते हसदियां हसदियां बर्दाश्त कर लेना ओ तेरा गला तन है। सच्चे पातशाह जे किते चमकौर दी गड़ी विच किसे सिख दे पैरां वल्लों गुजरे ते फिर पैरां वल्ले बह गए जो भी अल्लाह यार खां लिखदा चूमा कभी दहन चूमा कभी दहन गलू चूमने बैठे प्यंती जो आए तो कदम चूमने बैठे ओ जे किते चमकौर दी गड़ी विच कलगी वाले पातशाह सिख दे पैरां वल्लों गुजरे ते महाराज उत्थे बह के अपने सिखां दे पैरां नू चुमिया सिखाए तेरे पैर तन हन ए तेरे पैर मुबारक हन जिन्हां ने देश दी आजादी वास्ते इन्हां पैरां दे नाल कल नू हरन वांगू चूंगियां मार दिया आपां निछावर कर देना ए तेरे पैर मुबारक हन। फिरदे फिरदे कलगी वाले पातशाह अपने बच्चों को भी आवे
ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਡੋ ਰਾਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਘੋੜਾ ਬਣ ਕੇ ਊਟੇ ਦਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਊਟੇ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਉਹ ਬੱਚਿਓ, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਤਾਰਿਓ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਤਮ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜੋ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਯਾਰ ਖਾਂ ਲਿਖਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਗਏ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਵਾਨੇ ਪਾਰ ਚੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਾਸੂਮ ਹੋ, ਮਜਲੂਮ ਹੋ, ਲਖਤੇ ਦਿਲ ਗੋਬਿੰਦ ਹੋ, ਨਾਜ਼ਮ ਸੇ ਪਲੇ ਹੋ, ਘਰ ਬਾਰ ਲੁਟਾ, ਅਬ ਬਾਪ ਕਟਾ, ਅਬ ਤੁਮ ਵੀ ਚਲੇ ਹੋ, ਠੇ ਚਾਰ ਅਬ ਦੋ ਹੀ ਹੋ, ਸਰ ਯੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਗੇ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੂੰਗਾ ਜਬ ਯੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਗੇ। ਮਾਲਕਾ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੂੰਗਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੈਣਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋੜੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ।

वांगर वैरी पजावेगा, मेरा पत होके जाऊंदा मुड़के ना आवेगा, ओंदी होई मौत वेखना ओदी रू तड़कूगी, रण दे विच चंडी सिंह मर

लड़के जगीर सिंह भी लैलू नजारे पई जोगी के बाज मुए कौन ना अकूगी रांधे विच सिंगो तेग

0: आखर ओदे शरीर उत्ते सटा लगिया उन्हें जख्म खादे ओदे नाल दे साथी शहीद होए। बाबा जुझार सिंह ने जदों अपने वीर नू वेख्या शहीद हुंदिया उस वेले उन्हें शस्त्र उठाए ते पिता दे सामने आके जंग नू जाण दी आग्या मंग रहा। जरा चार लैणा साके दीआं जुगराज सिंह को सुनिए भाई।
1: जद वीर शहीदी पा गया वो टोटा टोटा सी आग्या मंगदा पिता तो ओदा भाई छोटा मैं मारूंगा टनका के जो दुश्मन खोटा मैं वैरी दे सर फेर दिया जो भंग नू कोटा मैं लावा एक एक वारना फिर जोटा जोटा मैं टावा खान वजीर नू जो डाडा मोटा मैं टावा खान वजीर नू जो डाडा मोटा।
0: जिस तरह बाबा जुझार सिंह पिता दे कोलों गल विच पल्ला पा के आग्या मंग रहा उस वेले दा सीन तुहाडे सामने है यो बयान कीता जा रहा जी।

सतगुरु जी निर्गुण हैं, पापी बड़े हां तो तेरा ही बच्चा है, बहुत बड़ा मैं पापी हूं सतगुरु जी, पर जिमें का हां हां तो तेरा ही बच्चा है सतगुरु जी, तेरी चरणी आप तेरे द्वारे से आ चढ़ा हूं, कृपा करो अपने बच्चे की अरदास अपने दर से प्रवान करो। मैं निर्गुण हां, मैं पापी हां, पर सतगुरु जी बख्शन वाले भी तो तुसी हो, होर दूजा कौन है जेड़ा मैंने बख्शे, तुसी बख्शन हां, कृपा करो मेरे अवगुणा नूं बख्श दो, मेहर करो सहमत करो, बहुत सारी रल के ऐसी अरदास की

हर दयाल शरण आया। जब शरण में आए हो सतगुरु जी, तुसी दयालु हो, तुसी कृपालु हो, मैं पापी मैं निर्गुण तेरी शरण आई। ते मंग केड़ी आओ सारी गल की मंगी।

ठाकुरां ने मेरे वर्गे पापी दी झोली नाम रूपी अमोलक निर्मोलक हीरा पा नाम दी दृढ़ता बख्शी नाम दे रंगन मिलणगे ऐसा कोई डर है कोई डर ऐसा नहीं कोई डर ऐसा नहीं बलिहारे जाइए ऐसे सतगुरु जी तो सदा सदा सदा सदा कुर्बान जाइए।

0: केलबोदी रंगीली धरती दे वसनीक श्रोतियो, तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ये प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सभा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हाँ कि इस प्रोग्राम नूं होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसी सानूं सुझाव दिंदे रहोगे।
1: साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नूं पता ही है, जे नहीं तां ओह भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3374 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3375।
2: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
3: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.

तेरी भक्त न छोड़ो, हम लोक हसे जत सिमरन करो नैन अवलोकनो, जत सिमरन करो नैन अवलोकनो, श्रवण बाणी सजस पूर रखो, मन सो मद

सके। मैं तो मोल महंगी लई जी सके, मेरी प्रीत गोबिंद से जिन घटे, मेरी प्रीत गोबिंद से जिन घटे, चरण कमल मेरे ही अरे बसे।

चरण कमल मेरे ही अरे बसे, चरण कमल मेरे ही अरे बसे, तेरी भगत न छोड़ दो पाम लोक हसे।

भगत रविदास जी महाराज उन्होंने इस अमृत शब्द के अंदर अपने मन की अवस्था उत्तम पुरख विच उन्होंने यह शब्द उच्चारण किया है, जिन्हों आप इथों की शब्दावली फर्स्ट पर्सन शब्द आप वर्तलां। पर जदों ये शब्द कह रहे ने कूप भरियो जैसे दादरा कछ देश विदेश ना बूझ, ऐसे मेरा मन बिखिया बिमोहया कछ आरा पार ना सूझ। इहदा मतलब यह नहीं कि भगत रविदास साहब जी का अंदर माया की वासना ने मोलिया, ये गल चेते रखिए। वसनीक ने बेगमपुरे दे उन्होंने अपने अंदर की अवस्था बाणी विच असी विचार चुके हैं, बेगमपुरा शहर को नाओ दुख अंधो नहीं तैठाओ, ना तस्वीर खराज ना माल, खौफ ना खता ना तरस जवाल। कहने अब मैं खूब वतन गह पाई, इहदा मतलब मैं थां प्राप्त कर ली। कहने ओ परम अवस्था जिदे विच गम चिंता झोरा ईरखा कीना साड़ा किसे नूं रंचक मात्र भी थां नहीं, क्योंकि उस शहर विच रहिंदा वां जिथे हमेशा गम तो रहत रहण वालियां शख्सियतां दा निवास है। ये उहनां दी अवस्था है। उत्थे जदों कहिंदे ने अब मैं खूब वतन गह पाई, हुण मैनू अपने वतन विच टिकाणा मिल गया, थां मिल गई, उहां खैर सदा मेरे भाई भरावो मेरे वीरो, उत्थे कदी दुख की खबर नहीं आउंदी, उत्थे हमेशा खैर ही खैर है, उत्थे सुख ही सुख है, उत्थे शांति ही शांति है। जदों से उहनां दा दूसरा वचन पढ़दे कि ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा मथ है छतर तरह। हे सोने प्रभु लाल, तेरे तो बिना सानू गरीबा ने किसने नवाजना है। हे मालिक, तू कृपा कीती किसे तो डरिया नहीं, किसे ब्राह्मण की परवाह नहीं, किसे राजे की परवाह नहीं, किसे विद्वान की परवाह नहीं, किसे बहु गिणती दे लोकां दी परवाह नहीं। जदों तू सिर ते छतर चलाउण लगना है किसे दे भय तो मुक्त हो के तू साडे वर्गे गरीबां दे सिर उत्ते भी गुसाइयां छतर चला देना। इहदा मतलब परम अवस्था है। उहनां दा सिर्फ एक दो होर बचन करके, क्योंकि शब्द दे अर्थ करन लई हजूर ने एक होर बचन कहा। उह शब्द कह नागर जना मेरी जात बख्यात चमारंग, हे नगर दे लोगो ये सब नू पता है कि मेरी जात चमार है, पर देखो सतगुरु जी की कृपालता, धन गुरु ग्रंथ साहिब देखो जो बाणी संपादन सी ना, अज सुबह भी मैं अर्ज की दशमेश गुरुदेव ने दसवें जामे